सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026 सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हे जगदम्बे जग कल्याणी, दुनिया कहती शेरा वाली, हे दया की देवी शैलसुता, चंडी ज्वाला हे माँ काली। है नाम असंख्य भवानी माँ, महिमा भी बड़ी निराली है, भक्तों की लाज बचाने को आती माँ ज्योता बाली है। जो भी माँ के दर पर आता, झोली उसकी भर जाती है, शेरा वाली माँ की महिमा दुनिया सारा गाती है।

मन मोह लियो रे सांवरिया तेरी चितवन ने, बसा लिया है तुझको मोहन मैंने मन के आंगन में। रंग प्रीत का ऐसा चढ़ा अब कोई रंग न भाए, सुधबुद खो बैठा मैं अपनी जब कान्हा याद आए। चरणों में तेरे है मोहन मेरा सर्वस्व अर्पण है, तुम ही धड़कन हो सांवलिया तुम ही मेरा दर्पण है।

हवा में गूंजती सदाए रहमत, मोहम्मद की है ये सच्ची इबादत। छोड़कर महलों की शान और शौकत, अल्लाह की याद में की हर इबादत। सादगी उनकी सबसे बड़ी मिसाल, मानवता को जिसने किया निहाल। ऐसे नबी की पाकीज़ा इबादत को सजदा करे ये आज भी सारा जहां।

हो, आज हर सूर तुम ही तुम हो। क्या तमन्नाएं हैं बोलो, मांग लो हमसे जो चाहो, मांग लो कहना हमारा, ये भी तो घर है तुम्हारा।

सत्य ज्ञान का दीप जलाकर अंधकार को दूर भगाया, एक ओंकार का दिव्य मंत्र नानक ने जग को समझाया। दूर करो मन के सब संशय, बाबा जी की अरदास सुनो, सच्चे मार्ग पर चलकर तुम हरदम वाहे गुरु कहो।

मंदिर में शीश झुकाने से या रोज पूजा करने से प्रभु तब तक नहीं मिलते जब तक कर्म ना हो सच्चे। भक्ति तो केवल दर्पण है जो मन को साफ बनाती है, सिखलाती है सही मार्ग और अच्छे कर्मों की राह दिखाती है। कर्म तेरा कर्तव्य है, ईश्वर उस कर्म का साक्षी है। तू अपने कर्म को धर्म बना, यही जीवन की सच्ची भक्ति है।

इसी भजन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में कलाकार थे सुयेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, यूसुफ आज़ाद, सुरजीत सिंह और अनूप जलोटा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जैसी भी मौजूदा वक्त की संस्कृति है, वो किसी एक कौम या मुल्क की बनाई हुई या बपौती नहीं है। ये तो मिलीजुली संस्कृति है जिसमें सब देशों ने अपना अपना हिस्सा शामिल किया है और उसके बाद अपनी खास ज़रूरतों के मुताबिक उसे अपना लिया। और अगर दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास कोई पैगाम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके पास है, तो उसे दूसरी कौमों के पैगामों से भी बहुत कुछ हासिल करना और सीखना है। मैं किसी भी शक्लो सूरत में फिरका परस्ती का भी हामी नहीं हूँ। मैं इस बात की दाद नहीं दे सकता कि किसी जात या धर्म के नाम पर ही सियासी और माली हक निर्भर करने चाहिए। हिंसा का ज़्यादातर उल्टा असर होता है और उसकी वजह से गिरावट भी आती है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में उसकी वजह से फूट भी पैदा हो जाती है। हमारी इच्छा है कि दुनिया की उस पुरानी व्यवस्था को बदल डालें जिससे लड़ाइयाँ पैदा होती हैं और लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। गरीबी और बेरोजगारी दूर करके अनगिनत लोगों की ताकत, जो अभी फिजूल और बेकार जा रही है, इंसानी तरक्की और भलाई करने में लगाएं। मतलब ये कि जहां अब बर्बादी होती है वहां निर्माण के काम होने लगें। मैं इस महान देश में खूब घूमा हूं और मैंने हिंदुस्तान की जनता के दिलों में उस तड़पन को फिर से महसूस किया है जो वो अपनी आंखों की भाषा से इशारा करती है। हमारे सामने बहुत से मसले हैं जिनका हमें सामना करना है और जिन्हें हमें हल करना है। अकेला राजनीतिज्ञ उनको हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उस नज़रिए और मजमून की जानकारी का अभाव हो सकता है, और न ही अकेला साइंटिस्ट उन्हें हल कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का हक नहीं होगा या फिर ऐसा नज़रिया नहीं होगा जो हर चीज़ पर और हर तरफ निगाह रख सकता है। ये मसले तो उन दोनों के निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के सहयोग से ही हल हो सकते हैं और होंगे। हमें अपनी जगह पर मजबूती से डटे रहना चाहिए, और आजकल के संकट में हमें जोश से या दलबंदी के भाव से या सबकी भलाई की बजाय अस्थाई लाभ उठा लेने की कोशिश से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने राजनीतिक क्षेत्र में नेकी के बहुत ऊंचे दर्जे पर काम किया है, और सार्वजनिक कामों में भी हमें सच्चाई के साथ ही काम करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अहिंसा हमारे लिए सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर अपनाई गई नीति है जिस पर चलकर हमें अच्छे नतीजे ही मिले हैं। ये सच है कि बहुत से लोग जो सत्य और अहिंसा की रट लगाते हैं, दोनों में से किसी पर भी यकीन नहीं रखते, और वे इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने की खातिर ही करते हैं। लेकिन फिर भी हम भरसक सत्य और अहिंसा की राह पर ही चलेंगे। उस राजनीति के खेल से क्या फायदा कि हम अपने उसूल ही खो बैठें और अपनी ईमानदारी पर धब्बा लगा दें। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है, और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने के हैं। हमें गरीबी को दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, अनपढ़ेपन को दूर करना है, और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। हम चाहते हैं कि हमारे खेतों से, हमारे पुतली घरों से और कारखानों से दौलत का प्रवाह निकले जो देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचता रहे, जिससे हम आखिरकार हिंदुस्तान के बारे में अपने सपनों को पूरा हुआ देख सकें।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर रमेश गुप्ता से की गई भेंटवार्ता, विषय है त्वचा की देखरेख। आपसे बात कर रहे हैं राम स्वरूप गंगवार।
2: आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि त्वचा की देखरेख हम कैसे करें जिससे कि हमारी त्वचा स्वस्थ बनी रहे।
3: त्वचा की देखरेख के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है हमें अपनी त्वचा को पहचानना कि हमारी त्वचा है कैसी। यदि हम अपनी त्वचा को पहचान लेते हैं कि हमारी त्वचा कैसी है, तो हमें उसका देखभाल करना, उसकी देखरेख करना, उसे स्वस्थ बनाए रखना आसान हो जाता है
2: जी।
3: कुछ तो तरीके ऐसे हैं जो सामान्य सभी को, चाहे वो किसी एज ग्रुप का हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब उसे कर सकते हैं। और कुछ होती है विशेष देखभाल। तो विशेष देखभाल त्वचा के टाइप पर डिपेंड करता है
2: जी।
3: या उसे कोई और परेशानी है त्वचा में, तो जिस तरीके की त्वचा में परेशानी है उस हिसाब से उसकी त्वचा की देखभाल भी की जाती है। सामान्यतः त्वचा की देखभाल के लिए हमें उसकी स्किन के टाइप को जानना थोड़ा आवश्यक होता है। देखिए, सामान्यतः जो हमारी त्वचा होती है वो 5 तरीके की होती है। किसी किसी की त्वचा शुष्क होती है, किसी की तैलीय होती है, किसी किसी की मिश्रित होती है।
2: अच्छा।
3: सूखी भी हो सकती है, तैली भी हो सकती है। और एक तो सामान्य त्वचा होती है, और जो पांचवी है वो होती है सेंसिटिव त्वचा। यानी वो कुछ भी थोड़ा सा बाहर की चीज़ें, जैसे धूप पड़ गई, थोड़ी सी धूप पड़ गई, या कोई दवाई खा ली, या कोई लोशन लगा लिया, या कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, तो उसका जो स्किन होता है उस पर रैसेज आने लगते हैं, खुजली होने लगती है। तो जिनकी सूखी त्वचा होती है उनके रोम छिद्र कम दिखाई देते हैं और उस पर रफ होता है, खुरदुरा होगा, उस पर स्केल आ जाएंगे, छोटी छोटी पपड़ी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि हमारी त्वचा शुष्क है। तैलीय त्वचा, इसमें जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, रोम छिद्र दूर से दिखाई देती है, स्किन जो होती है वो थोड़ी चमकीली दिखाई देती है, दूर से ही लगता है कि उस पर कुछ लगा हुआ है। तो तैलीय त्वचा, और उसमें सीबम ज़्यादा सिक्रेट होता है।
2: अच्छा।
3: और जो मिश्रित त्वचा होती है उसमें हमारे चेहरे का टी जोन होता है, जो ललाट और नाक और पूरे मुंह से होता हुआ आता है, ये टी जोन कहते हैं।
2: अच्छा।
3: टी जोन तैली होता है और गाल

0: जो घर में रसोई में चीज़ हैं उनसे भी आप चेहरे की, बदन की सफाई रख सकते हैं। सफाई के साथ साथ जरूरी है उसको मॉइस्चराइज करके रखना। जैसे
1: अच्छा
0: जिनकी त्वचा सूखी है उनको चाहिए कि अच्छा मॉइस्चराइज उसको रखें। जैसे हमारे घर में बादाम का तेल होता है, बादाम का तेल उस पर इस्तेमाल करें। और पानी खूब पिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि पानी जितना ही ज़्यादा हम पियेंगे हमारा जो स्किन होगा वो बॉडी जो होगी हाइड्रेटेड होगी, सिकुड़ने लगती है
1: अच्छा
0: स्मोकिंग वालों में, तो वहाँ तक स्किन तक ब्लड नहीं पहुँच पाता। और जब हमारी स्किन की त्वचा तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो जाहिर सी बात है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो स्किन जो होगी वो ख़राब होती जाएगी।
1: अच्छा
0: तो हमें इन सब चीज़ों से भी दूर रहना, यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्किन बढ़िया रहे, त्वचा बढ़िया रहे, तो इससे दूर रहना है। फिर खान पान का बहुत ज़्यादा इस पर है रोल।
1: हाँ वो तो है डॉक्टर साहब।
0: खान पान में हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, और फास्ट फूड को तो अपने थाली से आप हटाएं।
1: जी
0: फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा तैलीय चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, इनको हटाएं। की सलाह के मेरी सलाह में नहीं लेना चाहिए।
1: तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हमको त्वचा स्वस्थ रखनी है
0: जी
1: तो एक तो यह है कि हम सफाई रखें,
0: जी हाँ
1: खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और धूप से बचाएं, धुआं से बचाएं, धूल से बचाएं,
0: जी जी जी बिल्कुल सही
1: तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो हमारी त्वचा स्वस्थ रहेगी।
0: जी।
2: अभी आप त्वचा की देखरेख विषय पर डॉक्टर रमेश गुप्ता से की गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रहे थे रामस्वरूप गंगवार। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। इसका भी प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। रात 8:15 पर आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत। इसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे श्वेता रस्तोगी की गायी कुछ गजलें। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा श्रोता मंच, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री दिनेश वर्मा से की गई बातचीत। आपसे बात करेंगे मनोज कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी असीम सक्सेना की। कृषिगत कार्यक्रम होगा शाम 6:20 पर, जिसमें आज के आकर्षण रहेंगे नैनो यूरिया का प्रयोग विषय पर चर्चा, पॉली हाउस में सब्जियों की खेती विषय पर डॉक्टर सौरभ तोमर से की गई भेंटवार्ता। साथ ही कृषि संकेत में आप सुनेंगे फसल सुरक्षा उपकरण प्रयोग और देखभाल पर चर्चा। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी आपको बताया जाएगा। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे आज शाम 6:10 पर। रोजाना की तरह युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। हमारी विशेष सभा में अपराह्न 3:55 पर आज आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारकेश्वर हुगली में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने के कार्यक्रम का प्रसारण। इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:15 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम दिन में 12:10 पर। मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम होगा गीतमाला दिन में 11:30 पर। धरोहर ये कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है की कड़ी संख्या 7। सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर। सवेरे 10:05 पर कार्यक्रम होगा आपके अनुरोध पर। आज सवेरे 9:50 पर आप

0: सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे बेगम अख्तर का दादरा और मोती बेगम की ठुमरी। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। आज सुनिए प्रसंग संख्या 327।
1: एपिसोड नंबर 327, 327।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसलकर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानि से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति ए एस चंद्रोरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्यायं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीया स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में सुनिए नथुलाल गंगवार और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

डोली राही समझा मैं। नहीं तकनीक ही भैया ध्यान है।

0: नथुलाल व साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना, सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
4: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता,
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:19 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
5: के लिए बरसती है उसी तरह विद्या वृष्टि।

0: पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
3: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
2: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

0: वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
1: जो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है, अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
1: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की बैठक की और प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरीघाट ओडिया ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
2: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा कल वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की वर्षा को तो कहीं पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, रोजाना हम आपसे मुखातिब होते हैं और नई नई जानकारी मनोरंजन लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में, और आजकल हर शख्स इंतज़ार कर रहा है बारिश का। जी हाँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि असहनीय हो गई है। कल भी रामपुर का, आसपास का रामपुर का जो तापमान था वो 43 डिग्री से ऊपर था, 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर था। और खासतौर पर जो उत्तर भारत में मानसून की देरी हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अल नीनो की जो उपस्थिति है या उसकी जो दखल है वो मानसून में देरी कर रही है। इसकी वजह से मानसून का कमज़ोर चरण में प्रवेश कर जाना ये मुख्य कारण है। IMD यानी मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के बाद ही मानसून के सक्रिय होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अभी तक देश में मानसून की बारिश सामान्य से 40% कम दर्ज की गई है। और अभी भी आपने प्रादेशिक समाचारों में सुना भी होगा कि आज संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, और लेकिन फिर भी गर्मी से राहत अगले 3 दिनों तक नहीं मिल पाएगी। और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की केवल संभावना है, और आप तो देख ही रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों से जो संभावनाएं हैं वो मौसम जो है उनको झूठा कर दे रहा है। IMD के अनुसार मानसून अभी तक बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों को ही कवर कर पाया है, जबकि 15 जून के आसपास ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देते हुए 20 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड के कुछ इलाकों को भी कवर कर लेता था, लेकिन इस बार अब ये पूरी तरह से बिहार को भी कवर नहीं कर पाया। पिछले 8 से 18 जून के बीच में मानसून की रफ्तार में मामूली ही प्रगति हुई है, अब अगले 4 दिनों तक भी इसके आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। 23 जून के बाद ही मानसून बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ और इलाकों को ये कवर करेगा, ऐसा अनुमान है। और दिल्ली में भी मानसून के पहुंचने में देरी हो सकती है। तो ये जो मानसून का इंतज़ार है ये इस बार बहुत ही लंबा करना पड़ रहा है, लेकिन इन चीज़ों पर गौर करना होगा कि आखिर ये साल दर साल जो बिगड़ते मौसम के हालात हैं, यानी हम कहें कि मौसम चक्र बिल्कुल ही बदलता जा रहा है, सर्दी बहुत कम नाम मात्र को रह जा रही है, गर्मी की अवधि जो है वो लंबी होती चली जा रही है, बरसात कभी ज़्यादा होती है कभी सामान्य होती है और कभी उम्मीद होती है कि बिल्कुल कम होगी और इस साल ऐसा ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर है ही, निश्चित तौर पर असर है। जंगलों पर जंगल, पेड़ काटे जा रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात में श्रोताओं ये और हम और आप महसूस कर रहे होंगे कि वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना हम, सरकार तो अपना काम कर ही रही है लेकिन हमें भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर आने वाली पीढ़ी को हमें स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जलवायु, हरा भरा पर्यावरण और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक देनी है तो हमें स्वयं संकल्प लेना होगा। और जैसा कि हम कार्यक्रमों में जिक्र भी करते रहते हैं कि 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की हो चुकी है, तो अगर उसमें अगर छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ भी दें, अगर हम सोचें कि 120 करोड़ लोग भी एक संकल्प ले लें कि एक पेड़ हम लगाएंगे, साल में एक बार भी आपने एक पेड़ लगा लिया और उसकी देखभाल कर ली, तो 120 करोड़ पेड़ इस भारत की धरती पर जो जन्म लेंगे, जो बड़े होंगे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि ठीक है, समय के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, तकनीकों को अपनाना है, विकास भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं आवश्यकता हो रही है पेड़ों को काटने की तो उससे ज़्यादा कई गुना हमें पेड़ खाली स्थान पर लगाने भी होंगे, नहीं तो कि गर्मी ऐसे ही तड़पाएगी और हर कोई फिर पहाड़ों की तरफ भागेगा, ठंडे स्थानों की तरफ भागेगा, और वहाँ भी तो सीमित स्थान है ना, कहाँ तक कब तक कोई सहन कर पाएगा, और व्यवस्था बिगड़ जाती है और सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो क्यों ना हमें इधर उधर दौड़ने से अच्छा है हम अपने ही एरिया को हरा भरा बनाएं, पानी की बचत करें, पेड़ पौधों की सिंचाई करें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कि वृक्षारोपण करें। नहीं तो जून की गर्मी तो क्या लगभग 9 या 10 महीने ऐसे ही सताएंगे।

वाकई इतनी गर्मी है कि जो आवश्यक कार्य है ना वो भी करने में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस उमस भरी गर्मी के कारण जो हमारे शहर रामपुर में नैनीताल रोड पर जो लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है वो कल रोक दिया गया था, क्योंकि लोगों के फ़ोन अधिकारियों पर बार बार पहुंच रहे थे कि भाई गर्मी है, ऐसे में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो अधिकारियों ने कल तो काम रोक दिया था, लेकिन हम आपको बता दें कि आज शहर में 3 घंटे बाधित रहेगी बिजली। अब किन किन एरिया में रहेगी ये आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी विद्युत ने बताया है कि 20 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के कारण विद्युत लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। जी हाँ, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 33 KV किला लाइन की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिसके कारण किला, अस्तबल, जामा मस्जिद आदि क्षेत्रों में 3 घंटे बिजली नहीं आएगी। उन्होंने बताया है कि कार्य निपटने के पश्चात तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। तो अलर्ट रहिए, जो भी काम निपटाने हैं, श्रोताओं जो उस एरिया में रहते हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वो समय से काम निपटा लीजिए और अपने जो काम है वो निपटाने के बाद आगे काम बढ़ाइए। आज है 20 जून और आपको बता दें कि 20 जून का दिन बड़ा स्पेशल है। हम आप जानते हैं कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा देश भी हमारे घर के समान है, हमारे परिवार के समान है। और ऐसे में कहीं दूसरे देश से या कहीं से भी कोई आता है तो वो हमारे देश के लिए शरणार्थी बन जाता है। आज 20 जून के दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, यानी विश्व शरणार्थी दिवस। दुनिया भर में ये दिन शरणार्थियों को सम्मान देने और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में दिसंबर के महीने में 20 जून को संयुक्त विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का फैसला किया था। ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में अलग से एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की ये संस्था दुनिया भर के शरणार्थियों की मदद के लिए काम करती है। जिन जगहों पर शरणार्थी रहते हैं उन्हें कैंप, शिक्षा, मेडिकल समेत सभी चीज़ों की सुविधा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी संस्था पहुंचाने का प्रयास करती है। ये दिवस उन लोगों के लिए भी समर्पित है जो किसी मजबूरी के कारण अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर होते हैं और वहां पर कई तरह की परेशानी का सामना करते हैं। दुनिया भर के कई देशों में देखा गया है कि लोग आपदा, बाढ़, किसी महामारी, युद्ध के कारण, हिंसा समेत अन्य कारणों से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में ऐसे लोगों के मदद और उनके संघर्षों के लिए इस दिन को उनके लिए समर्पित किया है। इतना नहीं, इन शरणार्थियों को प्रेरित किया जाता है और दूसरे देशों में जाकर खुद के जीवन को दोबारा से शुरू कर

सकने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को वहाँ पर नया जीवन मिले और उन्हें जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जी हाँ, तो हमारा देश भारत वैसे भी महान है और भारतीय संस्कृति हमेशा मेहमानों को, अतिथियों को देवों के समान समझती, तभी तो कहा जाता है अतिथि देवो भवा। इसलिए जिस तरह हम अपने घर में आए मेहमान की आदर सत्कार सेवा करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे देश भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो अगर किसी दूसरे देश से आया है कोई भी व्यक्ति, तो उसको सम्मान दें, उसकी इज्जत करें और बिल्कुल उसको अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में माने, क्योंकि ये इज्जत आपकी दी हुई उनके दिल को छू जाती है और आप उनके दिल में घर कर जाते हैं।

वाकई दिल की दहलीज पर जो मेहमान बन के आते हैं वो दिल में घर कर जाते हैं। और आज जैसे हमने बताया कि 20 जून है, हमने बताया कि ख़ास दिन है विश्व शरणार्थी दिवस, इसके अलावा भी 20 जून को कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे देश विदेश में घटित हुई हैं जो इतिहास के रूप में दर्ज हैं। आपको बताते हैं कि 20 जून 1998 को विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर पांचवी फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। 1999 में 20 जून को सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 5 नगरों में क्रमशः मैक्सिको सिटी, पेचिंग, शंघाई, तेहरान और कलकत्ता शामिल थे। सन 2000 में 20 जून को काहिरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। 2005 में आज के दिन रूस मालवाहक यान M53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। और 2014 में 20 जून को प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज के दिन कुछ व्यक्तित्वों ने जन्म भी लिया था। 1958 में आज के दिन वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। 1952 में आज के दिन जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि रहे विक्रम सेठ का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय हिंदी साहित्यकार रहे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जन्म 20 जून 1940 को हुआ। कुशल पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष का जन्म 20 जून 1923 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार भुवनेश्वर का जन्म 20 जून 1910 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म 1869 में आज ही के दिन हुआ था। और सन 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली का जन्म 1760 में आज ही के दिन हुआ था। और हिंदी के ध्वजवाहक पत्रकार और साहित्यकार रहे वेंकटेश नारायण तिवारी का निधन 20 जून 1965 को हुआ। और अब एक नज़र आपकी आज की कुछ खास खबरों पर। हम आपको बता दें कि सभी पात्र प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन करने का अवसर है। 10 जुलाई तक नामांकन कर सकते हैं और 13 जुलाई तक अपने आवेदन को अंतिम रूप दे सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर अंजलि अग्रवाल ने बताया है कि प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत जिले के प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों, CBSE, CIESE, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आदर्श एकलव्य विद्यालयों में कार्यरत पात्र एवं इच्छुक प्रधानाचार्य और शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त तक कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राएं परीक्षा शुल्क जमा कर दें। विद्यालय के जिम्मेदार 10 अगस्त तक छात्र छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर दें। तहसील मिलक स्थित डॉक्टर राम बहादुर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज परिसर में सेवायोजन विभाग द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन आगामी 23 जून को सुबह 10 बजे किया जाएगा। इसमें बहुत सी कंपनियां शामिल हैं जो शामिल होंगी। प्रभारी जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया है कि चयन साक्षात्कार से किया जाएगा और अभ्यर्थी CV, पासपोर्ट साइज फ़ोटो तथा समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की एक एक छायाप्रति साथ लेकर अवश्य जाएं। रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इस मेले में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाएगा। और श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है 21 जून, लेकिन उसकी जो जोर शोर है ज़िले में कई दिनों से चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में रंगा हुआ है पूरा ज़िला। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कल यानी शुक्रवार को ज़िले भर में जगह जगह योगाभ्यास हुए। विशेषज्ञों ने योग के लाभ बताए। आयुष विभाग ने सुबह 7 बजे पदयात्रा निकाली। इससे पहले पदयात्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष और DCV चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
तो जगह जगह जो है योग दिवस की चर्चा है और लोग शामिल हो रहे हैं। आप भी योग ज़रूर कीजिए, उससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और कल एक और ख़ास दिन है और वो है छात्र छात्राओं से संबंधित, जो कल का जो दिन है वो उनके आगामी कैरियर को एक नया आयाम देगा, मजबूत मुकाम देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल जनपद में रामपुर में 21 जून को 9 केंद्रों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक श्री सोमेंद्र मीणा ने बताया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र, दवा व पानी की बोतल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर संचालित होंगे और इसलिए ख्याल रहे कि इसके अलावा जो चीज़ें बताई हैं, पानी की बोतल, दवा और प्रवेश पत्र, इसके अलावा आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकें। हाँ, साथ में पहचान के लिए आईडी ज़रूर ले जाएं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आपका आधार हो, और प्रवेश पत्र ये आपको ले जाना है। कल नीट की परीक्षा है, आप सभी छात्र छात्राओं को जो भी इस परीक्षा में शामिल हो रहा है उसको हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप ज़रूर सफल हों। इसके अलावा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रों के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन 1 जून से किए जा रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण और आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इसके अलावा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत जनपद में 15 दिवसीय शिल्पकार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 22 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आपको बता दें कि आज के जो मौसम का हाल रहेगा उसमें जो तापमान रहेगा ज़िले रामपुर का, वो अधिकतम 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा और मौसम सामान्य रहने की संभावना है, इसलिए पानी पीते रहें, शरीर को हाइड्रेटेड रखें और मौसम का आनंद लेते रहें। श्रोताओं, इस गर्मी के सीजन में जो है आम जो है लोगों को बहुत लुभा रहा है, जिसमें दशहरी, लंगड़ा और बनारसी आम की शहर में बहुत धूम है और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। और गर्मी के बीच ही फूलों का बहुरंगी संसार कर रहा है आपका इंतजार। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के बारे में, जो इस समय फूलों से भरा हुआ है और ये जो है पर्यटकों की जो पहली पसंद होता है। इसमें पर्यटन विभाग की ओर से ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2025 में इसको। यहाँ दुर्लभ हिमालयी फूल खिलते हैं और यहाँ पर जून से लेकर अक्टूबर तक 400 से अधिक प्रजातियों के फूल खिलते हैं। तो इस गर्मी में फूलों की घाटी जाकर आनंद लीजिए और इस पहाड़ों के हुस्न का मजा लीजिए।

आपसे बातें करते करते कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। हमारा पता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 2449-01। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है patramila@rampur.gmail.com। इसके साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने के अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरो। करो योग, रहो नीरो।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरो। करो योग, रहो नीरो।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश, आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख

0: क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
7: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
6: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
8: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road and dedicate three indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodok and INS Agraya, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly Rs. 590 crore, a new 300-bed railway hospital in Howrah, and a rail overbridge in East Midnapur. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives under the Digital Agriculture Mission, including AgriStack and the Dhanodhan Krishi Yojana. The Prime Minister's program extends to fisheries and animal husbandry with projects such as modern fishing harbour at Fraserganj, a fish market in Birbhum, and Eastern India's first goat semen research laboratory in Nodia.
9: Sandeep Andashgupta, Akashbani News, Kolkata.
6: Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas. Mr. Modi said this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal has been appointed as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agrawal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agrawal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said, "The appointment reinforces India's commitment to combating terrorism financing and illicit financial networks." The National Testing Agency, NTA, will conduct a nationwide mock drill today ahead of the NEET UG re-examination 2026. It is part of the preparations to ensure smooth, secure and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
9: The National Testing Agency has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled tomorrow. In a statement, NTA said that exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification and GPS-enabled vehicles with police escort for movement of examination materials. The re-examination will be conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in pen and paper mode. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
6: The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. SEBI chairman Tohin Kanta Pandey shared the details after the crucial board meeting.
10: The key decisions relates to simplifying and standardizing the framework for easier transmission of securities to legal heirs and claimants of deceased investors. Now we are creating a new category of quick transmission processing for small value claims. Simplified documentation, which already exists, the limit is being increased from 5 lakh to 10 lakh for physical holdings per listed company and from 15 lakhs to 30 lakh for dematerialized holdings per beneficial owner.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India. A report.
1: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees, offering fiscal support of up to 50% for silicon fabs, compound semiconductor facilities, assembly and testing units, and chip design. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees, laying emphasis on industry-led research and training centers to drive technology development and create a future-ready skilled workforce. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
2: The first mission was to start the industry in our country. It's a extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. India's space economy is now valued at about $8.4 billion and is expected to grow 4 to 5 times over the next 8 to 10 years, potentially reaching $40 to $45 billion. Talking to Akashvani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
11: In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base, and the increase in the private participation have started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicle, earth observation, and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
1: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: The 12th International Yoga Day 2026 will be celebrated tomorrow globally. The theme for this year is Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country, bringing together India's rich cultural heritage and yoga traditions. The main national celebration will be held at Kolkata's historic Red Road under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where he will lead the nation in the common yoga protocol. Moreover, President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level program in Jabalpur, Madhya Pradesh tomorrow. Moving on to sports, in men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.H.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
12: Thank you, Naresh. U.S.-Iran meet put off over Lebanon clashes. Israel-Hezbollah agreed to a truce but region on edge is a top headline in the Times of India. Yogi vows strict action Ayodhya funds row. Bid to defame says SIT will reveal the truth within 15 days. SP Congress spreading falsehoods is a top headline in the Asian Age. The Supreme Court has declared that every citizen has a fundamental right to walk on a demarcated footpath, holding that this right is primary and takes precedence over the movement of motorized vehicles, as it delivered a far-reaching judgment that could reshape urban planning and road design across the country, reports in the Sun Times. Delhi High Court upholds government order blocking Telegram to secure NEET retest. Government empowered to issue emergency blocking directions under IT Act, writes the Indian Express. In its editorial title, Trump's Versailles and a Chance for Peace, the Tribune writes that there is delicious irony in the fact that President Trump signed the Memorandum of Understanding with Iran at Versailles on June 17. The terms of Trump's surrender at Versailles are a far cry from the conditions that he had unilaterally set for the Iranians. Like the original Treaty of Versailles in June 1919, this one will have a profound psychological impact, not just on the US, but also on Israel, on the Gulf states, and indeed on Iran itself. And finally, an app, Abhigyan, has been launched that will soon enable police and agencies to carry out instant fingerprint-based verification of criminal records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
6: Thank you, Subhadra. But now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
14: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इकतदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50,00,000 किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
13: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
15: बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निजाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की है। इस ताजा तरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निजाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बदल गई है। सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती, इक्तिसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुदमुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद है। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर्स मिशन 2M का आगाज किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन 2M के तहत इको निजाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिसमें सैटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था, जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
15: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
13: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर कुतबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अजम को मजीद तकवीत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
15: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में एनटीए ने कहा कि यह इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनाकिद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निजाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोबारा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीकेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
16: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आरजी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निजाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौइयत के दीगर इकदाम इम्तिहान में

0: मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। यह फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पैन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और QR कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निजाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह निजाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। यह 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनाकिद होगी, जहां वजीर आजम कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मजाफात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोजाना प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक्वामी सिकिल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोजाना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपये की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इंकलाब ने उजागर किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अजम को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए गुरु रंधावा और हीर की आवाज़ों में फिल्म पति पत्नी और वो दो का गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और अब सुनिए आईपी सिंह और जोनिता गांधी साथ में आशीष कौर को फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में।

अभी आपने सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज़ों में सुना फिल्म ओ रोमियो का गीत। और लीजिए अब सुनिए सचेत टंडन और साज भट्ट की आवाज़ों में फिल्म बार टू का गीत।

अभी आपने सुना खान साहब की आवाज में फिल्म धुरंधर 2 का गीत, और लीजिए आप सुनिए रोमी और तनिष्क वाकची की आवाजों में फिल्म तेरी बातों में, ऐसा उलझा जिया फिल्म से।

अभी आपने सुना विशाल ददलानी और वेनी दयाल को फिल्म वार में। बोली जी, अब सुनिए अमित मिश्रा और श्रेया घोषाल व साथियों की आवाज़ों में फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको याद दिला दें, आज सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। अब 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: की हलचल आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
2: कासगंज जनपद में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। जनपद के सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर, जन चौपाल संगोष्ठियां, लाभार्थी संपर्क अभियान तथा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जबकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में जनपद कासगंज में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक योगाभ्यास के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष सप्ताह के दौरान जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों, तहसील परिसरों, विकास भवन, विकास खंड कार्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग सप्ताह का भव्य समापन 21 जून को नवीन पुलिस लाइन कासगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस बारे में कासगंज की साहित्यकार और समाज सेवी पारुल वंसल ने बताया।
3: योग हमारे ऋषि मुनियों की वह अमूल्य देन है जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने का काम करता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहे। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी है और मानवता के कल्याण का संदेश।
2: कासगंज जनपद में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडी परिसर में 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सोरों, सहावर, गंज दुंडवारा, अमापुर और सिरपुरा में 1-1 केंद्र तथा पटियाली में 2 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। जनपद में आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID अभियान 2026 के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीला रानी ने बताया कि आगामी 28 जून को जनपद के 336 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी।
1: कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
4: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए तहसील सिराथू, चायल और मंजनपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलों पर उप निबंधक कार्यालय की स्थापना होने से किसानों और व्यापारियों को अपनी जमीनों को बेचने और खरीदने में समय की बचत होगी। लोगों को कार्यालय में बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध होगी। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू तहसील परिसर में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। 213 स्वयं सहायता समूहों को 63,90,000 और 338 स्वयं सहायक समूहों को 5,07,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित जन जागरूकता 56 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 7 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया गया। कौशाम्बी जिले में 12 वर्ष सेवा सुशासन गरीब कल्याण और विकसित भारत संकल्प ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव और भरोसा दिलाता है। जिले की प्रभारी मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने कहा कि 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव, जो 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताता है। 2019 से पहले बड़ा बहुमत देकर जनता ने मोहर लगाई और फिर 2024 में तीसरी बार जनता ने चुनकर साफ कर दिया कि देश में सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के हित में किसान सम्मान निधि जारी किया। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दी गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर स्वच्छता की नई क्रांति लाई गई। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से 74,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक ऋण बांटे गए। पीएम विश्वकर्मा योजना से 30,00,000 लोगों को लाभ पहुंचाया गया। धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसानों को केसीसी योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक 10,00,000 करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी छूट दी गई। माताएं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। बेटियों की सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। कौशाम्बी जिले में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से प्रारंभ कर दी गई है। कौशाम्बी जिले में साइबर सेल द्वारा 23,00,000 कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ऐप के माध्यम से चोरी और गायब हुए 23,00,000 कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया गया। लोगों को जागरूक किया गया। बैंक बैंक खातों से गायब धनराशि 20 लाख से अधिक बरामद कर बैंक खातों में वापस किया गया। मिशन शक्ति योजना के तहत स्कूलों में स्टॉल लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। गांव-गांव बुकलेट पेपर वितरित कर छोटे छोटे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया। कोई भी घटना घटित होने पर हेल्पलाइन नंबर 112, आपातकालीन 1076 मुख्यमंत्री और 1090 वुमेन पावर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: आप सुन रहे थे जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: था जिसने शौचालय को लेकर।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के।
2: जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आँखें देती सर्वस्वार, जो तुम आ जाते एक बार। प्रस्तुत रचना हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका, कवयित्री और शिक्षाविद महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग की एक प्रमुख हस्ती मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण रहा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता था, क्योंकि वह अपनी कविताओं में एक प्रेमी से बिछड़ने के बाद के कष्ट और पीड़ा को काफ़ी भावनात्मक तरीके से पेश करती थीं। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज इलाहाबाद में पूरी की और बाद में संस्कृत में एमए किया। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और महिला मुद्दों का विवरण मिलता है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से महिलाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात की। उनकी रचनाएं नारीवादी दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं और वे नारी मुक्त आंदोलन की प्रबल समर्थक थीं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाओं में यामा, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा शामिल हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई, प्रकृति का सुंदर चित्रण और मानवीय संवेदनाएं प्रमुखता से मिलती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण किया है और उनके माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। महादेवी वर्मा की निबंध और गद्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं शामिल हैं। इन रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, समाज की विसंगतियों और मानव संवेदनाओं का वर्णन किया है। उनकी लेखनी में सरलता, स्पष्टता और संवेदनशीलता की विशेषता है। महादेवी वर्मा को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जीवन और साहित्यिक यात्रा हमें प्रेरणा देते हैं और उनके लेखन से हमें समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। उनकी साहित्यिक धरोहर आज भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बना रही है और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने को हैं। पेश खिदमत उर्दू प्रोग्राम, इसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर कर रहे हैं।
3: आज का ये उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है।
4: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, सेहतनामा के एक नए एपिसोड के साथ आप सभी का खैर मकदम है। सामिन, कभी सोचा है आपने कि सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, फिर भागते हुए अपने काम पर जाते हैं। कई बार नाश्ता भी छूट जाता है और लंच तो दोपहर के बजाय शाम के तकरीबन 3-4-5 बजे ही होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो नींद के वक्त नींद कहाँ? ये है हमारी तर्ज जिंदगी जो कितना बदल चुकी है, और इस बदली हुई तर्ज जिंदगी का असर कहाँ दिखता है? यकीनन हमारी सेहत पर। कभी कमर दर्द, माइग्रेन, शुगर, बीपी, हत्ता की 30 की उम्र में 60 वाली बीमारियां, फिर भी हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं। इसीलिए आज के सेहतनामे की खसूसी थीम है हमारी तर्ज जिंदगी और सेहत। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड ENT, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
0: आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
4: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल इंटरनेशनल योगा डे है, योगा की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है?
5: योगा को अगर आज की जो आपने बात की जदीद तर्ज जिंदगी
4: जी,
5: जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उसमें तो अब योगा को अपनाना हमारे लिए एक जरूरी चीज होगी।
4: बिल्कुल,
5: योगा को एज एन एक्सरसाइज लें, अपने दिमागी सुकून के लिए लें, या इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर हम अपने आप को योगा को दें तो उसके तमाम फायदे हैं
4: जी।
5: और अगर एक्सरसाइज के तौर पर देखें तो ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमें तमाम जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके रिस्क को कम करता है, और जिनको है उनकी मेडिसिन की डिपेंडेंसी को कम करता है
4: जी।
5: जो जरूरी चीज है कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक, क्योंकि योगा जो है वो एक्सरसाइज अपने शरीर को दिमाग से जोड़ने का भी काम करता
4: है,
5: सुकून से करने वाली चीज है
4: जी।
5: देखा जाए तो ये सबसे सस्ती एक्सरसाइज है, ना कहीं आपको जाना है, एक छोटा सा योगा मैट लिया,
4: बैठ गए
5: किसी कोने में, डाल दिया और अपने योगा किया, बहुत अच्छी चीज है।
4: अच्छा, देखते हुए डॉक्टर साहब, हुकूमत हिंद ने इसको प्रमोट किया है और अच्छा किया है, क्योंकि हमने देखा है हमारी ऐसी तर्ज जिंदगी हो गई है कि हम घर में रहें, बाहर रहें, गर्मी के मौसम में एसी में रह रहे हैं और गाड़ी में है तो एसी चल रही है, मेहनत का कोई काम रह नहीं गया, पसीना निकल नहीं रहा, तो हुकूमत हिंद ने जो इसको एक इनिशिएटिव जो लिया है वो बेहद जबरदस्त थे और मेरे ख्याल से सबके लिए बेहतर होगा। आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस पे इसका रोल किस तरह से पड़ता है? हाँ, आपकी बात वो अधूरी रह गई थी डॉक्टर साहब।
5: नहीं, मेंटल स्ट्रेस जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने या कहना चाहिए कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने हमें रफ्तार तो दी है जिंदगी को,
4: बिल्कुल,
5: बहुत आसानियां भी बहुत पैदा करी है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो है मेंटल स्ट्रेस। इंसान स्ट्रेस में चला गया,
4: बिल्कुल,
5: इंसान जहनी तौर पे थक जाता है दिन भर काम करके, तो उसमें जो ये आप आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट जो एक्सरसाइज को अपने देते हैं या योगा को देते हैं, तो उसमें जो एक सुकून जिंदगी को आपके अपने जहन को मिलता है, तो योगा से तो एक चीज बड़ी क्लियर जो साइंटिफिक तौर से प्रूफ है कि हमारे जो शरीर में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं,
4: बिल्कुल,
5: तो योगा करने से एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है
4: जी जी जी,
5: तो जो हमें एक फील गुड फैक्टर फील कराता है।
4: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात करें
5: जी,
4: और एक परसेप्शन भी है और मेरे ख्याल से ये सबको करना चाहिए, सुबह की जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग एक्सरसाइज, वो इतनी अहम क्यों है?
5: सुबह की एक्सरसाइज जो सबसे पहले अहम अगर है किसी वजह से, तो वो ये है कि सुबह का जो वक्त होता है वो साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि सबसे ताजी हवा होती है
4: जी,
5: पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो उस वक्त जब आप काम करते हैं और जो हमारे इंसान की जो जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो सही वक्त होता है कि अगर हम उसको एक्सरसाइज से शुरुआत करें तो हमारा दिन बहुत बेहतर बन जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो बड़ी बात है मैं बताना चाहूँगा कि सुबह के वक्त जो एक्सरसाइज करने का एक जो फायदा ये भी है कि ये जो जरूरी काम होते हैं या जो इमरजेंसी आती है तो ये सुबह के वक्त थोड़ी कम होती है। अगर आपने अपना एक्सरसाइज का या योगा का टाइम आपने मान लीजिए रात के 8 बजे सारे काम खत्म करने के बाद शुरू किया, अब वो 8 बजे के करीब घर पे कोई मेहमान आ जाए,
4: मेहमान आ गया,
5: आपको किसी जरूरी काम से कहीं जाना है, किसी शादी पार्टी में जाना है, तो वो मिस हो जाएगी, मॉर्निंग टाइम को अगर आप अपने फिटनेस के लिए देते हैं तो वो उसमें मिस होने के चांसेस कम होते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है।
4: बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपनी बात करें तो डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी के बारे में, तो सुबह फजर के बाद अक्सर 3-4 दोस्त हैं और लेके क्रिकेट के पूरा किट लेके पहुंच गए, खेत में सामने मैदान है और वहां पर 1-1.5 घंटा हम लोगों ने जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग जैसी करनी कर ली, वापस आए पूरे पसीने से लथपथ, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो एक अलग ही,
5: वो आप खुद फील करते होंगे कि वो क्या चीज जो मिली, अगर वही चीज आप शाम में क्रिकेट खेलेंगे तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी,
4: बिल्कुल नहीं आएगी,
5: और हो सकता है रोज खेल भी ना पाए,
4: नहीं मुमकिन भी,
5: आपको मौका भी नहीं मिलेगा।
4: बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बीमारियां ऐसा कहा जाता है कि बिना प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ये सही नहीं होती, जैसे शियाटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पैरालिसिस है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो लोगों की कहावत है अक्सर, क्या ये सच है?
5: नहीं, ये बहुत हद तक सच है कि ये जो बीमारियों का नाम आपने लिया जैसे शियाटिका, ये नर्व कंप्रेशन का मामला है,
4: बिल्कुल,
5: आपने बात की स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस, ये हड्डियों के आपस में नज़दीक आ जाने, चिपकने या इनके स्पेस कम हो जाने का मामला है, और दूसरा आपने बताया पैरालिसिस, पैरालिसिस में दिमाग का जो कांटेक्ट है आपके मसल से दूर हो जाना, तो ये दवाएं इसमें बहुत हद तक रोल करेंगी कि वो न्यूरोमोटर्स हो सकती हैं, आपके ब्रेन को कम कर सकती हैं। लेकिन अगर शियाटिका के मामले में देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराते हैं कि उस नर्व को खोलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेचिंग है वगैरह इस सब।
6: जी, बिल्कुल।
5: और अगर आप स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो उसके अंदर भी वो ट्रैक्शन वगैरह लगा करके उसके अलग एक्सरसाइज वो फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको, तो उसके बिना वो नहीं काम चलेगा, खाली दवाओं से नहीं काम चलेगा। और पैरालिसिस में तो बिल्कुल आधे से ज्यादा का रोल है एक्सरसाइज और इंसान की अपनी खुद के सेल्फ का कॉन्फिडेंस कि हमें ये करना है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी या हमारी एक्सरसाइज का इतना रोल होता है कि वो कहते हैं मस्कुलर प्लास्टी करती हैं, वो दिमाग की नसों को शरीर की मसल से फिर से जोड़ने का काम करती हैं ये एक्सरसाइज।
6: बिल्कुल,
5: तो ये तो बिल्कुल जरूरी है, बिना एक्सरसाइज की नहीं चीज।
6: और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये जो योगा है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे।
5: डेफिनेटली।
6: अब इस वक्त मेरे जहन में सवाल आ रहा है, हमारे जो सामेन है वो गाँव में भी रहते हैं शहर में भी रहते हैं, शहर वालों को मैंने देखा है तर्ज जिंदगी वो ये है कि वो मॉर्निंग या इवनिंग में जाके जिम क्लब होते हैं, वहां पर जाके जबरदस्त पसीना बहाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन जब गांव की बात करते हैं तो वहां अभी ये चीजें मौजूद नहीं है। क्या बिना जिम के विदाउट जिम के अच्छी एक्सरसाइज की जाती है?
5: बिल्कुल की जा सकती है और ये ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से, जिन लोगों के पास वक्त नहीं है जिम जाने का या जिम की फैसिलिटी उनके घर में उनके शहर में घर के आसपास। आप तो शहर की बात कर रहे हैं, जरूर जिम है लेकिन कितने लोग जिम जा सकते हैं, उनके पास वक्त है या टाइम है? घर पे सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं जो जिम में मशीनों पे होती हैं, घर में जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं। आप अगर डंबल की बात करें तो उनकी जहां पे पानी की दो बोतलें ले लें 1 लीटर की, उससे वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए एक सिंपल से रबर बैंड ले सकते हैं।
6: बिल्कुल।
5: रस्सी कूदना बहुत आसान है, स्ट्रेचिंग के लिए स्क्वाड है पुशअप है, इसके लिए कौन सी मशीन की
6: सही बात है?
5: ये तो आप घर पे कर सकते हैं।
6: बिल्कुल। ये छोटी छोटी जो टिप्स आप दे रहे हैं हमारे सामेन बड़ा गौर से सुन रहे हैं और यकीनन वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब बात अभी चल रही थी जदीद तर्ज जिंदगी की, आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, मैं फिर से सवाल उसी तरह आ रहा है, इसका नेगेटिव असर क्या हुआ हमारे जिस्म पर?
5: हमारे जिस्म पे आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है या ये कह रहे हैं सोशल मीडिया से भरी हुई जिंदगी है, आठ आठ नौ नौ घंटा कंप्यूटर पे बैठ के काम करने से या ऑफिस में बैठ करके काम करने से हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हुई है।
6: बिल्कुल।
5: फास्ट फूड जंक फूड ये सारी चीजें ये भी तो तर्ज जिंदगी आज की जो है इसी का तो एक हिस्सा है। और आप ये मानिए यकीन कि इन खानों में कोई बेहतरी नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट नहीं होता है, हमें जो विटामिन चाहिए जो हमें मिनरल्स चाहिए इन फास्ट फूड जंक फूड में नहीं होते हैं। जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको ये लगता है कि हम कोई इंसान है वो 20 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाता है, लेकिन क्या वो चल के जा रहा है? क्या वो साइकिल चला के जा रहा है? नहीं, मोस्टली लोग जो है सफर आजकल मेट्रो से बस से या कार से या अपनी बाइक से करते हैं।
6: बिल्कुल सही बात है।
5: 2 किलोमीटर भी किसी का ऑफिस है तो वो पैदल चल के नहीं जाता। तो जरूर है भाग दौड़ है लेकिन एक्टिविटी नहीं है, इसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी कमी की वजह से तमाम बीमारियों को बढ़ावा देता
6: है। डॉक्टर साहब भाग दौड़ भरी जिंदगी की बात चल रही है, आपकी भी जिंदगी बेहद मसरूफ है, बहुत भागदौड़ आपकी जिंदगी में रहती है, लेकिन आप खुद फ्रेश होने के लिए किस तरह का काम करते हैं? मैंने सुना था किसी से कि आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, वो क्या गुनगुनाते हैं, आप अपने आप को कैसा फ्रेश रखते हैं, जरूर हमारे सामने को सुनाएं या बताएं आप।
5: नहीं, बस ऐसे एक गजल का के दो शेर है।
6: जी जी बिल्कुल।
5: है तो गजल सदुल्ला खान गालिब साहब की।
6: बिल्कुल।
5: बाजीचा अतफाल।
6: जी जी,
5: माने मैं बता दूं ये बच्चों का खिलौना।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे,
6: क्या बात है।
5: बाजीचा अतफाल है

0: लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। जितना जबरदस्त मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने शेर को लिखा है और उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारे डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब ने किया, और बहुत ही आवाज और अच्छी क्लासिकल अंदाज में आपने पढ़ा, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है जब आप डॉक्टर साहब रात में लेटते होंगे और कभी ये गुनगुनाते होंगे तो आपको तो नींद जबरदस्त आती होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नींद आजकल लोगों को आ नहीं रही है, नींद ना आने की बड़ी वजह क्या है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये नींद ना आने की जो समस्या जो आज के जमाने में ये बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल,
0: बिल्कुल,
1: और एक हमारी जिंदगी में जो भाग दौड़ के साथ साथ एक जो कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन तक तो ठीक है, एक शॉर्टकट जो है ना, ये हम जो ये सोशल मीडिया देखते हैं, आप देखते होंगे कि इसमें जो रील्स आती हैं या जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये मोस्टली कामयाब लोगों के होते हैं, कामयाब जिंदगी के बारे में होते हैं, तो उसको देख के ये खासतौर से बच्चों में और सारी यूथ में भी होता है कि ये हम कैसे यहाँ पहुंच जाएं, या वो कोई एक रील डालता है या वो कोई कंटेंट डालता है तो वो उसके अंदर वो डोपामिन लूप बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें होता क्या है कि वो हार्मोन बार बार निकलता है इस बात के लिए लाइक्स कितने आए, आए कि नहीं आए,
0: राइट राइट,
1: कमेंट्स आए कि नहीं आए, कमेंट्स अच्छे आए कि बुरे आए, अच्छे आए तो खुश हो गया, और अगर उसमें किसी ने एक बुरा कमेंट डाल दिया तो वो टेंशन में आ गया, तो ये बहुत सारी चीजें हमारे स्ट्रेस लाती हैं, और जो स्ट्रेस में इंसान रहेगा तो फिर नींद तो रात में गायब हो जाना है। अगर आप अच्छी नींद बेहतर लेना चाहते हैं तो अपने सोने के टाइम से एक घंटा पहले मोबाइल को ऑफ करके रख दें, मोबाइल से दूरी बना लें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें, बेहतरीन नींद आएगी, करके देखिए।
0: नहीं, ये आपकी बात डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक बेहद खतरनाक होता जा रहा है, हमारे जिस्म के लिए, हमारी नींद के लिए, हर चीज के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने खान पान की बात करी दी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात और कर ली जाए सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में। बहुत सारे ब्रांड इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, अलबत्ते इतना जानना जरूर चाहूंगा कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मशरूबात हो सकते हैं जो हम घर पर तैयार करें और वो हमारे सेहत के लिए काफी मुफीद साबित हो सकते हैं, जैसे नींबू पानी या वगैरह। डॉक्टर साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ हमारे सामीन को इस बारे में जरा बता दें।
1: सॉफ्ट ड्रिंक्स वो किसी नाम से आते हो, ये ब्रिवरेज ड्रिंक्स या जो सोडा वाटर हैं, ये किसी भी सूरत में आपके शरीर के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है,
0: बिल्कुल
1: कोई रिफ्रेशमेंट नहीं देते हैं, कहीं से गर्मी को कम नहीं करते हैं, और एक जो मिथ है कि हम ये सोडा पी लेंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है सर, ये गलत है। इससे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक से एसिडिटी बढ़ती है, गैस्ट्राइटिस ट्रबल करता है ये, इससे तो दूर ही रहना है, इसका कोई फायदा नहीं।
0: बिल्कुल, बाकी चीजें तो आप घर पे,
1: अब वो जो नींबू पानी है, नींबू का शरबत बना के पिए, आम का शरबत बना के पिए, बेल का शरबत पिए, जितने मौसमी फल हैं उनको खाएं, उनका शरबत बना के पिए,
0: बिल्कुल सही बात है। और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं काफी हद तक आप हेल्दी रह सकते हैं। खान पान की बात करें तो बाहर के खाने से जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का खाना पता नहीं चलता कि किस तेल में बनाया गया, कैसा तेल है, इसलिए इन चीजों से बचाव जरूरी है। डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने मोबाइल की बात की, फिर उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, बच्चे क्या, मैंने बुजुर्गों को अब देखना शुरू किया कि गाड़ी पर राइड के दौरान वो ईयरफोन का इस्तेमाल करना, नेक बैंड का इस्तेमाल करना, ब्लूटूथ का रेगुलर इस्तेमाल करना, इसका हमारे कान के साथ साथ और क्या परेशानी होती है, किस तरह की बीमारियां इससे बढ़ती हैं?
1: कान की बीमारियों में डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ऊंचा सुनाई देने लगता है लोगों को, और ये हियरिंग लॉस तक जाता है बच्चों में। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे, अगर कान में ये जो गैजेट्स लगा करके जो बच्चे आजकल म्यूजिक सुनते हैं, जिम करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये हमारे कान को खराब कर रहा है, हियरिंग लॉस ला रहा है, जहन में स्ट्रेस ला रहा है, और इससे एक बड़ा खतरा ये है कि अगर इस तरह के हियरिंग साउंड सिस्टम को कान में लगा करके, जिसको ईयरफोन कहते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हुए हैं, लोग गाड़ियों से कट गए हैं, ट्रेन को देखा नहीं, पता नहीं चला, पार कर गए और ट्रेन आके चल गई।
0: जी डॉक्टर साहब, जदीद टेक्नोलॉजी, हम जदीद तर्ज जिंदगी पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का हमारी सेहत पर, हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें।
1: दोनों बातें करूंगा, जदीद टेक्नोलॉजी का फायदे की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो हाँ, फायदे इससे वाकई बहुत हुए हैं। आजकल लोग स्मार्ट वॉच से, अपने गैजेट से, ऐप से अपने स्टेप को, अपने SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और टेलीमेडिसिन का आजकल बड़ा चलन बढ़ा है, अपनी बीमारियों को लोग अगर नहीं डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, दूर है, वक्त नहीं है, तो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू उनकी अर्ली डायग्नोसिस बन जा रही है, उनको सही राय मिल जा रही है, मशवरा मिल जा रहा है, अपनी रिपोर्ट्स को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अलार्मिंग गैजेट्स होते हैं, वो आपके हार्ट रेट को या आपके ओ2 लेवल को बता देते हैं, अलार्मिंग होते हैं, तो उससे इंसान, तो ये सारी चीज़ें तो ये फायदेमंद हैं हमारे।

0: गैजेट्स हैं, ये तो ये काम किया है और ये जदीद टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि इससे बहुत फायदा उड़ रहा है।
1: चलते चलते आखिरी सवाल मेरा और उसके बाद आप एक पैगाम आप हमारे सामेन को देंगे। हमारा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त नौजवानों में दो बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, एक है बीपी और दूसरा है शुगर, इसकी बड़ी वजह क्या है और इससे वो कैसे बच सकते हैं?
0: देखिए, ये बीपी और शुगर ये दोनों बीमारियां आमतौर पे कहते हैं खानदानी है
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन इनको बढ़ावा मिल रहा है हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी जो जदीद तर्ज जिंदगी है
1: जी,
0: इनको बढ़ावा मिल रहा है, ये जल्दी होने लगी है। जैसे आर्थराइटिस तो होता है, लेकिन ये अर्ली आर्थराइटिस क्यों हो रहा है? ये हमारे अमल से हो रहा है, हमारे काम काज करने के तरीके से हो रहा है, हमारी जो लाइफ स्टाइल, हमारे जिंदगी का जो टाइम टेबल है, इसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ये हो तो किसी को भी सकती है, लेकिन जो आपने कहा ये जल्दी हो रही है, उसका यही है। हमारा रात भर जगना, दिन भर सोना, वक्त की पाबंदी ना करना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, और हमारी अगर बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं और हम जंक फूड और ये पैक्ड फूड पे अगर हम जी रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए फिर आप तैयार हैं कि मोटापा भी आएगा, वजन भी बढ़ेगा, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारियां, इनसे बचना है तो इन चीज़ों से दूरी करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी को सिस्टम में लाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे सामईन को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में?
0: बिल्कुल, पैगाम मेरा फिर वही है कि जिंदगी जो भाग दौड़ की जिंदगी है, ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जदीद तर्ज जिंदगी की बात हो रही है और सेहत की, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसने हमारी जिंदगी को रफ्तार दी है, हमें कामयाबी की तरफ आसानी पैदा की है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरा पैगाम यही है कि अपनी जिंदगी में टाइम टेबल बनाएं,
1: बिल्कुल,
0: रात में सोना, सुबह में जल्दी उठना,
1: बिल्कुल,
0: एक्सरसाइज को वक्त देना
1: जी,
0: आप अच्छी सेहत के बिना कोई कामयाबी, कोई पढ़ाई आपके लिए बेकार है।
1: बिल्कुल,
0: एक बीमार इंसान कामयाब हो के क्या करेगा?
1: बिल्कुल सही बात,
0: कामयाब हो भी नहीं सकता, हो भी जाएगा तो क्या हो?
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई लिखाई कैरियर बहुत जरूरी है,
1: हाँ,
0: बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी सेहत को आप प्रायोरिटी दें, पहली प्रायोरिटी दें,
1: जिसमें सबसे
0: बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी कर।
1: बिल्कुल सही बात है, ये पैगाम आपका बेहद खूबसूरत है और कारामद भी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए।
1: सामिन, ये थे जनाब डॉक्टर जुबैर अहमद खान साहब, जिनसे अभी आप करामत गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपना पैगाम हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुन लें, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जा रहा था। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए बेगम अख्तर के गाए दादरा, बोल हैं कोयलिया मत कर।

मोती बेगम की गई इसी ठुमरी के साथ उप शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहले सुनिए अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बंजारन का गीत। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां। बीज नमूरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। मौला हलवायान शीरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। राजौरा रोड मिठाकुआ रामपुर से दीपक रस्तोगी, रवि, अर्पित रस्तोगी, अभय रिया और आरुष रस्तोगी। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोई और स्वाति मौर्य। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। जमनी मोहल्ला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निसा, असलम हुसैन और डॉक्टर महमूद हसन। बीवीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। तो लीजिए सुनिए अलका याग्निक को फिल्म बंजारन में।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए अगला गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है खुदा गवाह और इस गीत को पसंद किया आप सभी ने। भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्परानी और आकाश कुमार। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, रजिया, सिमरन, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की खां, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास रामपुर से गज़न खां, शमा परवीन, शमशद अली अज़्म, गुलफ शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। कशवा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और साइमा नदीम। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म खुदा गवाह से ये गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में।

और अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश को फिल्म बेवफा सनम में। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पला, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। बड़ी मस्जिद के पास मिलक भूजपुर आशा मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी। कसब मीरगंज से कल्लू मिस्त्री। बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की, दक्ष, छवि, रुद्र, आयुषी, खमानी सिंह और इनके सभी साथी। जैतुका किशनपुर से आलम, शवाना नायक, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा। परिमल कासगंज से आवाज खान, नवील खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी साथी। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय, साथ में हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ग्राम लोहारी खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश कुमार धनजय, राहुल।

विशाल, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय बैद, रानी महिमा और नीतू बैद, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साईं गायकवाड़, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस वहाकर, विशाल वहाकर, वोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूड़त, औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो, दस्तगीर शेख, फैजनवी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम नवी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शाकिल, बिस्मिलाबी, गदर शेख, आणी लिरोफर शेख और इनके सभी साथी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मितलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर, ग्राम उड़ेला पोस्ट लपरी जौनपुर से कुमारी चंदा, चांदनी कुमारी, आकाश कुमार, कन्हैयालाल और रीता देवी, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, साइमा, मुस्तावा खान, अफिया खान, रऊफ और शहीद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म बेवफा सनम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:30 हुए हैं। असुनिए सदावार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर कार्यक्रम में श्रोताओं आज सुनवा रहे हैं वो गीत जो हमेशा से सदाबहार रहे हैं। आपके लिए पहला गीत मुकेश की आवाज़ में फिल्म तीसरी कसम से। गीत लिखा शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म ताजमहल में। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रोशन ने। और लीजिए अब सुनिए कैफ भोपाली का लिखा गीत गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म है पाकीज़ा।

आई मिलन की बेला। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म लीडर का गीत। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है नौशाद ने।

अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फागुन में, और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में गीत फिल्म पतिता से। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक और फन बेमिसाल है। आज आइए सुनते हैं इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 7।

और फन बेमिसाल है। श्रोताओ, चार बैत की सफर पर आधारित इस धारावाहिक की पिछली यानी कि छठी कड़ी में आपने सुना कि इब्तदाई दौर की चार बैतों में जबान और उरूज की नुमाया खामियां थी। गजल का बोलबाला था और गजल को शोरा और तालीम याफ्ता लोग चार बैत को अवामी अनपढ़ लोगों का लोकगीत समझकर तवज्जो के लायक नहीं समझते थे। सेहत जबान और उरूज की कमी को महसूस करते हुए अंबर शाखा आशुफ्ता ने गजल की जबान में उरूज की पाबंदी के साथ चार बैतें कही, लेकिन अवाम ने चार बैत की इस नए रंग को पसंद नहीं किया। लेकिन उस्ताद सब्र तस्लीमी की कोशिश और लगन से जदीद चार बैतें भी पसंद की जाने लगी। गुलाम नबी खां माजी, सद्दन अंसारी और गुलाम अली खां की चार बैतों ने जदीद चार बैतों को आम लोगों की पसंद बना दिया और पुराने अंदाज की चार बैतों के साथ जदीद चार बैतें भी गाई जाने लगी। और पिछले एपिसोड में आपने ये भी सुना कि नवाब कल्बे अली खां की सरपरस्ती ने चार बैत के फरोग में बहुत बड़ा योगदान दिया और फन बेमिसाल है। अब सुनिए चार बैत के सफर पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक की आज की सातवीं कड़ी।

0: वो पैकरे नाज अपनी जुल्फों को अगर झटके, सब्र तस्लीमी के इस रंग को देखकर दूसरे अखाड़ों के उस्तादों ने भी जदीद रंग में चार बैते कहना शुरू की और अखाड़ों में मुकाबले की चार बैते कही जाने लगी। उस्ताद मियां खां और उनके शागिर्दों में मुर्शद मुजद्दी और आजिज ने जदीद रंग की अच्छी चार बैते कही हैं। मियां खां की चार बैत भी क्या खूब है।
1: फिर नवेदे फसले गुल बादे सबाल आने लगी, फिर खिली कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी। आई यादे गुलबदन जिस दम चली ठंडी हवा, आसमां को देख कर अश्कों का मेह बरसा दिया। अब्र गम छाया उठी जिस वक्त पूरब से घटा, बर्क जब चमकी दिले आशिक तो तड़पाने लगी। फिर नवेदे फसल गुल बादे सबा लाने लगी, फिर खिली कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी। याद रख दो चार दिन की चांदनी है ये हवा, फख्र से क्यों है दिमाग अर्शे मौला पर तेरा। क्यों नहीं रखती जमीं पर पांव ऐ बादे सबा, फसले गुल आते ही क्यों इस तरजा इतराने लगी। फिर नवेदे फसले गुल बादे सबा लाने लगी, फिर खिली कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी। सोंगा आते ही ये फरमाया मुझसे बार बार, खंजरे रंजो अलम से हो गया सीना फिगार। वाए नाकामी न होने पाए हमसे हम किनार, आज उनको शाम ही से नींद भी आने लगी। फिर नवेदे फसल गुल बादे सबा लाने लगी, फिर खिली कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी। एक दिन वो बाग में तन्हा जो मुझको ले गया, देख कर उस बुत को मैं आपे से बाहर हो गया। हो के बेखुद ऐ मियां खां सीने से लिपटा लिया, ख्वाहिशे दिल जब ज्यादा पांव फैलाने लगी। फिर नवेदे फसले गुल बादे सबा लाने लगी, फिर खिली कलियां हंसे गुंचे बहार आने लगी।
0: जदीद दौर की चार बैतों का ये असर हुआ कि चार बैतों की रदीफ और काफियों में शोरा गजलें कहने लगे। मुर्शद मुजद्दी भी दिल के मामले में अपने उस्ताद मियां खां से कुछ आगे ही नजर आते हैं।
1: प्यार करने को तुझे जुल्फे दुता थी, मैं न था। क्या लिपटने को कमर से ये बला थी, मैं न था। बात मुद्दत के मेरे पहलू में आया दिलरुबा, बख्ते ख्वाबीदा को मेरे आज ये रुतबा मिला। बेखुदी में ले लिया बोसा चबीने नास का, सच तो ये है इस मेरे दिल की खता थी, मैं न था। प्यार करने को तुझे जुल्फे दुता थी, मैं न था। क्या लिपटने को कमर से ये बला थी, मैं न था। खुद ब खुद मायल हुई है क्यों तबीयत आपकी, मेरी जानिब आजकल क्यों है इनायत आपकी। आने जाने की न थी पहले तो आदत आपकी, खींच लाने वाली ये आहे रमा थी, मैं न था। प्यार करने को तुझे जुल्फे दुता थी, मैं न था। हो गए बेवजह गुस्सा फिर गई ना हक नजर, लाएगा मुर्शद कहाँ से ये कलेजा और जिगर। हाथ टूटे मैंने चिलमन को छुआ भी हो अगर, जिसने बेपर्दा किया तुमको हवा थी, मैं न था।
0: जदीद चार बैत का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, चार बैत की जबान और अंदाजे बयान पर भी निखार आता गया। जमाल की चार बैत का मजमून तो पुराना है, زبان صاف اور شیریں ہے۔

0: रजा हमदानी को पश्तो, हिंद को और उर्दू चार बैत पर लिखने वालों में सरे फहरिस्त माना जाता है। उनकी राय है,
1: उर्दू चार बैत कहने वाले रामपुर, टोंक और रुहेलखंड ही में पाए जाते हैं, जहां ये रिवायत अब भी जिंदा है। लेकिन सारे हिंदुस्तान में सिवाय रामपुर के और कहीं रिवाज नहीं। रामपुर में चार बैत इस कदर मकबूल है कि लोगों के ठट रात भर चार बैतें सुनते हैं और सैर नहीं होते।

चार बैत का सफर पठान फौजियों के साथ ही आगे बढ़ता गया। 1742 में कठेर यानी आज के रोहिलखंड के नवाब अली मोहम्मद खां की मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के हाथों शिकस्त ने रोहिला सरदारों को रोहिलखंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कठेर मुगल शासक ने नवाब अली मोहम्मद खां को चकलादार का ओहदा देकर सरहिंद भेज दिया। अमीर खां रोहिला ने राजस्थान पहुंचकर टोक पर अधिकार करके नवाब की उपाधि पाई। अब्दुल गफूर खां ने जो मौजा भैंसिया तहसील बिलासपुर रामपुर का रहने वाला था अपने फौजी दस्ते के साथ राजस्थान पहुंच गया। लड़ झगड़ कर जावरा पर अधिकार करके नवाब बन गया और कुछ रोहिला भोपाल पहुंचकर वहीं के साकिन बन गए। इस तरह रोहिलखंड से पलायन करने वाले दूसरे सूबों में आबाद हो गए और उनके साथ पश्तो और हिंदको का चारबैता भी चला गया जो वक्त के साथ उर्दू चारबैत में तब्दील हो गया। करीमुल्लाह खां के शागिर्द और खलीफा सुलेमान खां मिस्कीन ने चारबैत में बहुत नाम कमाया। आज तक उनकी चारबैत का कोई जोड़ नहीं कह सका। अगर टोक के चारबैत गो शोरा का तस्करा किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। कुछ नामवर चारबैतों के नाम हैं: रहमत शाह खां इबरत, जहीर, मुस्तर खैराबादी, कलामी, अख्तर शीरानी, उत्तम चंद चंदन वगैरह। टोक के रहने वाले नूर की ये चारबैत रोहिलखंड के हर चारबैत में गाई जाती है। नूर ने मौसम बहार की हर अदा की बड़ी हसीन मंजरकशी की है जिसे सुनकर दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजारे नसीम की याद आ जाती है।

0: का।
1: टोंक के चार बैत गो हकीम सैयद सईद अहमद असद की ये चार बैत तो कभी कभी रामपुर में भी सुनने को मिल जाती है।

0: टोंक ही के मशहूर गजलगो हजरत बिस्मिल सईदी की ननिहाल रामपुर की है। वो गजलगो की हैसियत से सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। आपने चार बैतें भी कही हैं।
1: रुत लगी बरखा की और आए नहीं मोरे पिया, उन बिना मेरी सखी बेकल न हो कैसे जिया। बाग में मिलजुल के सब हम जोलियां गाएं मलार, और हवा झूले की ठंडी पड़ती है मेह की फुहार। उनको खुशियां रज मुझको मेरा उनमें क्या शुमार। हाय मुझ दुखिया को इस गम ने अलग सबसे किया, रुत लगी बरखा की और आए नहीं मोरे पिया, उन बिना मेरी सखी बेकल न हो कैसे जिया।
0: अफगानिस्तान और सरहदी इलाकों से चलकर चार बैत का कारवां जो रियासत रामपुर में ठहर गया था, वो सिर्फ रोहिलखंड में ही नहीं पहुंचा बल्कि रामपुर के फौजी गुलबास खां के जरिए राजस्थान की छोटी सी रियासत जावरा भी पहुंच गया।

0: गुलबाज खां अब्दुल करीम खां के पांचवें खलीफा थे। इन्होंने चार बैत का अखाड़ा भी बनाया, खुद भी चार बैतें लिखते थे, लेकिन ज्यादातर कलाम रामपुर के उस्तादों का गाया जाता था।
1: नफरियादी बन क्यों कर गरेबा आसती दामन उड़े

0: और फन बेमिसाल है। चार बेत के सफर पर आधारित अभी आपने इस धारावाहिक की 7वीं कड़ी सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक और फन बेमिसाल है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मन भावन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीत माला। गीतमाला कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। दुनिया में उल्फत का यही दस्तूर होता है, दिल से जिसे चाहो वही हमसे दूर होता है। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर जैसे कांच का खिलौना जैसे टूटकर चूर होता है।

इस दिल को अगर तेरा एहसास नहीं होता, तू दूर रहकर यूं दिल के पास नहीं होता। इस दिल ने तेरी चाहत कुछ ऐसे बसा ली है, एक लम्हा भी तुझ बिन कुछ खास नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल होता है उस दिल का जिसमें कोई खास बसता है, और जब वही शख्स किसी वजह से हमसे दूर हो जाता है तो दिल टूट जाता है। जब दिल टूटता है तो जुबां खामोश हो जाती है, बस यही फरियाद होती है, कोई तो होता जो हमारा हाले दिल जान पाता। आंखों में आंसू हैं पर किसी को दिखा नहीं सकते, अपनी तकलीफ किसी को सुना नहीं सकते। प्यार करने की सजा कुछ ऐसी ही होती है, टूटा है प्यार में दिल, किसी को बता नहीं सकते।

बड़े शौक से उतरे थे हम समंदर इश्क में, एक लहर ने ऐसा डुबोया कि आज तक किनारा ना मिला। कुछ ऐसा ही हाल होता है मोहब्बत में टूटे हुए दिल का। जब किसी का प्यार उसे छोड़कर चला जाता है तो दिल में दर्द के साथ साथ बहुत से सवाल भी होते हैं। आखिर क्यों उसने मेरा दिल तोड़ दिया? उस वक्त बस यही सवाल आता है कि काश हम उससे बेवफाई की वजह पूछ पाते। कांच का तोहफा न देना किसी को, रूठ कर लोग तोड़ दिया करते हैं। जो बहुत अच्छे हैं उनसे प्यार मत करना, अच्छे लोग ही दिल तोड़ दिया करते हैं।

ये संग दिलों की दुनिया है, यहां संभल के चलना। यहां पलकों पे बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। बेवफा इंसान को बस एक बहाना चाहिए होता है दिल तोड़ने का। बड़े संग दिल होते हैं वो लोग जो किसी का भरोसा, किसी का प्यार भरा दिल पल भर में तोड़ देते हैं सिर्फ खुद के बारे में सोचकर। पर जिसका दिल टूटता है उसका भरोसा उठ जाता है इस दुनिया से, प्यार मोहब्बत से। रह जाते हैं तो बस आंसू, आहें और शिकायतें। जिंदगी से अपना हर दर्द छिपा लेना, खुशी ना मिले तो गम को गले लगा लेना। कोई अगर कहे मोहब्बत आसान होती है तो उसे मेरा टूटा हुआ दिल दिखा देना।

दिल मेरा तोड़ा ऐसे वीरान भी रहने न दिया, खुद खुदा हो गया, मुझे इंसान भी ना रहने दिया। मोहब्बत में टूटा हुआ दिल हर दम नाकाम रहता है, अपने प्यार से दूर होकर ना जिया जाता है और ना ही दुनिया छोड़ पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि शायद वो लौट आए। मोहब्बत में नाकाम दिल हर जगह उसे ही ढूंढता रहता है और हर किसी से बस यही कहता है, टूटे दिल के टुकड़े संभाल कर रखे हैं हमने, उस बेवफा के दिए जख्म छुपा रखे हैं हमने, प्यार बदनाम ना हो जाए इस दुनिया में कहीं, झूठी हंसी के पीछे सारे गम छुपा रखे हैं हमने।

सोचा ही नहीं जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब हम आंसू छिपाने में माहिर हो जाते हैं, ये जिंदगी भी दिल को रास आने लगती है और जिसके बिना मर जाने का डर होता है उसके बिना जिंदगी जीना आ जाता है। दिल टूटा है संभलने में कुछ वक्त तो लगेगा, हर चीज इश्क तो नहीं जो एक पल में हो जाए।

टूटे हुए दिल ने भी उसके लिए दुआ मांगी, मेरी हर सांस ने उसके लिए खुशी मांगी। न जाने कैसी दिल लगी थी उस बेवफा से, आखिरी ख्वाहिश में भी उसकी ही वफा मांगी। साथियों, दुआओं के ये सिलसिले कभी खत्म ना हो, सबकी दुआओं में असर हो, इसी दुआ के साथ आज गीतमाला कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब सुनिए सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जनपद संभल से प्राप्त सूचना के अनुसार सानिया पुत्री नन्हे निवासी व थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल विगत 8 जून से गांव सुल्तानगढ़ से लापता है। सानिया की आयु 35 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग हल्का सांवला, चेहरा भारी गोल, आंखें बड़ी हैं और ये गुलाबी रंग का सलवार सूट पहने हैं। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें जलालुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी सुल्तान नगर पीएस तनारी संभल। दूरभाष संख्या है 8685902565।

शहर बानो, पत्नी जलालुद्दीन, निवासी सुल्तानगढ़, थाना धनारी, जनपद संभल, विगत कुछ समय से लापता हैं। इनकी आयु 35 वर्ष, कद, क्षमा कीजिए, इनकी आयु 21 वर्ष, कद 5 फीट, रंगे हुआ चेहरा गोल, आंखें काली हैं, ये काले रंग का सूट और पैरों में चप्पल पहने हैं। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें, दूरभाष संख्या है 9927324394।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:10 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर से राजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, मोहम्मद रियाज, रजिया नूर, आफिया नूर और शहजाद हुसैन, मोताला महाराष्ट्र से कुमकुम विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश कुमार, सन्नी, जयमिन कुमार, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन, ये श्रोता हैं गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवान्या, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी, महादेव पारा से मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुभान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता गौड़, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर और बीबी प्रियांशी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमचिम गुप्ता, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बाड़ चौक बाड़मेर राजस्थान से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और समस्त हागोड़े परिवार, आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है करण अर्जुन।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: गीत आपके नाम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। संगीत फिल्म का ये गीत इन सभी श्रोताओं के नाम। बुलडाणा पंचिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमित कुमार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मेंडी शर्मा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। मोहल्ला बरादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, नगमा नाज मंसूरी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। तंत्री की भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नुखेलाल वर्मा। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन और ओवी। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले। कपसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना परवीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। आप सभी के नाम ये गीत।

और अब गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। कोयला फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। ये श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। ग्राम शिरडे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्य शेरे। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज शाह। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयदेव यादव और विनोद पुरी। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और हरप्रीत कौर। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरमंत कौर, मनु। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी और असद बाबू। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। तहसील रोड गंजुंडवारा से एच के राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील। ग्राम धूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। बूंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर और सुषिता भटकर। खेलबाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। आप सभी के नाम ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है कोयला।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। ये श्रोता हैं गांव व डाकघर निमनाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। पटियाली रोड गंजुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी और बीबी हरीबा अरीबा हबीबा। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस पोर्ट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। संगमित्रा श्रोता संघ पोफाली यवतमाल से जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बोड़ागछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये श्रोता हैं गंजुनवारा से मास्टर खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजिज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। सहारनपुर से राधा नामदेव। मधुबनी बिहार राजनगर से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी। ताजपुर मोरवा से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया देवी गुप्ता और गोदावरी देवी। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी। अंबाला से आशु खान और सोनाली खान। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। बोरखेड़ा पित्रा मल उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नहटा, देशा कुश मूणत। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और परवीन गुजराती। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी। उमरखेड़ से अजीता मदारी और प्रमिला मदारी। दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, अल्फिया, सदफ, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अल्फिया खान और पोत्रा मुश्तबा खान। कोटवाना

और अब कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। ये गीत इन सभी श्रोताओं के नाम, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा। ये श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम रानी, साक्षी, अच्छे लाल और फलना झा। साथ हैं बुल्की वाली ग्राम ओ पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, रासना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून, गुड़िया खातून। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और राज एस डी अंसारी। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी। बोरसरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, बबली अंशु और प्रियांशु साहू। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। लाहौरडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन, जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, शशि बाला और किरण। ये श्रोता हैं चंद्र अंबाला कैंट से सोनाली नारंग, पतिक भसीन, कृषिव कुलभूषण। डोंडी लोहरा से प्रभा जामोरिया, अनुश्री और पूजा डॉली जामोरिया। राजद्वारा मीठा कुंवर रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी। आप सभी के नाम ये गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम ग्राम व पोस्ट लदाबली मुरादाबाद से माया देवी, अजीत कसाना, ऋतिक और आदित्य कसाना, गांव उगाला जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंदसौलिया, रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी और सलोनी, गुमला झारखंड से एस एम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खट्टक, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप सभी के नाम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, फिल्म का नाम है राजा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एक बजने वाले कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद

0: कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देशभर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हेलो फरमाइश, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 1:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: आज अपराह्न 3:55 से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारकेश्वर हुगली में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने के कार्यक्रम का प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से। आज शाम ये कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:00। 5:15 पर युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। 6:10 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। 6:20 पर इसमें आज चर्चा का विषय होगा नैनो यूरिया का प्रयोग। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सौरभ तोमर के साथ भेंटवार्ता का विषय होगा पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। कृषि संकेत के अंतर्गत फसल सुरक्षा उपकरण प्रयोग और देखभाल के विषय में जानकारी दी जाएगी। किसान साथियों के मनोरंजन के लिए होगा लोकगीत और मौसम का पूर्वानुमान आप सुन सकेंगे। समय याद रखिएगा 6:20। श्रोता मंच इस कार्यक्रम में शाम 7:00 आज सुनिएगा श्री दिनेश वर्मा से मनोज कुमार की बातचीत। प्रस्तुति होगी असीम सक्सेना की। सुगम संगीत में 7:31 पर आज कलाकार होंगी श्वेता रस्तोगी। आठ बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के माध्यम से। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। अखिल भारतीय पत्रिका चित्र भारती दिल्ली केंद्र से 9:30 पर रिले होगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी रामपुर है। 1:10 हुआ चाहते हैं कुछ ही देर में इलाकाई खबरें लखनऊ से रिले होंगी। दीबा हाशमी से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक्कित किए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए के 1,000 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकतदार ममालिक को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात की गई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3 अरब 94 करोड़ डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जानें, जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विजन को पूरा कर रही हैं।
3: सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर मॉक ड्रिल करेगी। ये मश्क इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियास्तान नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान 2 जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियास्तान शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी रेनू तिवारी। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं, अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं तो डायल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-2324-326। और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: रामबू जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं दीदी पक्का पम्मी में बोल रहा हूँ।
0: अपना नाम बताएंगे?
1: पम्मी पम्मी पम्मी पक्का वक्त है।
0: पम्मी
1: जी, आप ठीक हैं?
0: जी हम ठीक हैं। पम्मी आप क्या करते हैं?
1: हम दीदी पेंट का काम भी करते हैं, मिस्त्री काम भी करते हैं।
0: आजकल मौसम बहुत गर्म हो रहा है और जो काम आप करते हैं उसमें शारीरिक श्रम बहुत लगता है, तो कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं?
1: दीदी तो बच्चों के लिए सब करना पड़े पेट के लिए हमें।
0: जी तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कि गर्मी के मौसम में काम तो करना ही है, चाहे मौसम जी, गर्मी का हो या सर्दी का हो, तो ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं?
1: हम वही पीते हैं पानी, नींबू पानी
0: और साथ में हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
1: मैं तो दीदी आपके यकीन मानो मत मानो, मैं सुबह शाम तक आपको प्रोग्राम सुनता हूं मैं।
0: आज आपका फोन लगा है, हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवाते हैं आपको?
1: वो सारी अर्जुन का गाना ना, बंधन दिलों के बंधन,
0: करण अर्जुन फिल्म का गीत
1: जी, वो गाना है बंधन दिलों के बंधन, ये नाचे दिलों के नाचे।
0: ये बंधन फिल्म का गीत कह रहे हैं आप?
1: जी जी जी जी जी।
0: अच्छा,
1: गाना बहुत बंधन दिलों के बंधन, ये नाचे दिलों के नाचे।
0: कोई और भी सुनना चाहेगा कि आप अकेले सुनेंगे?
1: जी जी जी, मैं को सुना, सब लोग सुनना चाह रहे हैं। ये गाने सारे हरी गप्पार जी हैं, नब्बू का पान वाले हैं, नेहा है छिपियाल मोहल्ले में से, हमारे बच्चे पारा, सगुन, दीपिका, मनीषा, हमारी बीवी बीना।

0: जी
1: और फारूक भाई सेगल वाले मछियार से हैं। आपके प्रोग्राम तो दीदी अच्छे लगते हैं मुझे, अभी आपका प्रोग्राम सुनने अच्छे से आपने गाना सुना मुझे।
0: आपको कार्यक्रम पसंद आया इसके लिए बहुत
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: मैं दीदी आपकी याद भी कोला थी, आपकी पेंटिंग खराब चली क्या
0: जी?
1: आपकी? मैंने फोन कहा था हल फरवरी में रात 10 बजे टाइम पे, तो आपकी पेंटिंग खराब चली क्या?
0: ये हमें पता नहीं है।
1: मैं कॉल ला रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा फोन।
0: कई बार ऐसा होता है कि हमारी श्रोताओं से बात चल रही होती है तो हमारी बात नहीं हो पाती है।
1: जी जी आपने रहा था कि पेंट कुछ खराब चल रही है, जिसको लग गई जिसकी कॉल लग गई, हम जिसकी जो नहीं लगी लगी जी।
0: कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
1: जी जी
0: तकनीकी कुछ परेशानी हो जाती है जिसके कारण कॉल नहीं लग पाती
1: कॉल
0: है।
1: लग पाती जी जी सही
0: जी
1: आप।
0: आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं
1: जी जी सही
0: और
1: है,
0: सुनवा
1: गाना
0: रहे
1: दीजिए पूरा
0: हैं।
1: सही ठीक है।
0: हम कोशिश करेंगे कि हम आपको गाना पूरा सुनवा दें।
1: जी जी ठीक
0: जी सुनिए,
1: है
0: आप
1: दीदी
0: सभी
1: नमस्ते।
0: की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहल्ला थाना टीम रामपुर से बोल रहा हूँ। गुड्डू भाई।
0: गुड्डू भाई कैसे हैं?
1: ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
0: गुड्डू भाई, आजकल मौसम बहुत गर्म हो रहा है।
1: अरे बहुत गर्म है सर।
0: तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि कैसे अपने आप को
1: तो
0: बचा कर रखें?
1: अरे 12 बजे से 5 बजे तक तो घरों से निकलना ही नहीं है। मतलब कर रहा, बच्चों को भी, छोटे बड़ों को भी, इस वजह से घर से निकलते नहीं। बहुत गर्मी है।
0: बिल्कुल जरूरी है।
1: बहुत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लोगों के अस्पताल भरा पड़ा है, बहुत सब परेशानी हो रही है।
0: बिल्कुल, खाने पीने के संबंध में एहतियात बरतें, बाहर जब तक जरूरी ना हो ना निकलें।
1: जी,
0: आज आपका फोन लगा। हेलो फरमाइश में कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: नीला आकाश का सुनवा दिए।
0: नीला आकाश का?
1: जी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: मेरी वाइफ है रूमा खान, बेटा मोहम्मद कामरान खान और अरमान खान, और हमारे दोस्त है इकराम अली प्रेमी।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश
0: हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं?
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ मैम।
0: इलियास भाई, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: ये बताइए इलियास भाई कि आज आपकी हमसे काफ़ी दिनों के बाद ही बात हो रही है, तो इन दिनों आपका फ़ोन लगा ही नहीं या आपने किया नहीं?
1: नहीं मैम, हम बस एक 1.5 महीने के बाद ही कॉल लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे नए श्रोता वो जुड़ जाते हैं, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं, उनके विचार सुनने को मिलते हैं, तो अच्छा लगता है, उन लोगों का भी दिल खुश होता है।
0: बहुत अच्छी बात है इलियास भाई। वहीं एक शिकायत आपके माध्यम से कह लें कि हम भी करना चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं कि जिनकी कॉल एक बार प्रोग्राम में लग जाती है उसके बाद वो नाम बदल कर कॉल करते हैं। ये कार्यक्रम के लिए अच्छा भी नहीं लगता और ऐसा भी नहीं है कि उनकी आवाज़ें पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर जब आपकी एक बार कॉल लग जाए तो दोबारा मत लगाओ, अन्य श्रोता से, नए श्रोता से बात होगी तो अच्छे रहेगा, और क्योंकि आपकी आवाज़ तो हम पहचान ही लेते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि दोबारा कॉल नहीं लगाएं, सिर्फ एक बार कॉल लगाएं।
0: बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि कुछ श्रोता जो जिनकी आवाज़ हम पहचान लेते हैं हम नाम लेकर उनको कुछ कहें, तो अच्छा यही रहता है कि श्रोता अपने आप ही समझ लें और अगर एक बार कॉल लग गई है तो दोबारा कॉल ना करें।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज आपका फोन लगा है हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: जब मेरा आज हेलो फरमाइश में कॉल लगा ग्राम समोदिया से, तो फिल्म का नाम है दिलवाले और गीत के बोल हैं मौका मिलेगा तो हम बता देंगे आकाशवाणी रामपुर को कितना प्यार करते हैं।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
1: कुछ नाम लेना चाहूंगा मैम।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ये बिटिया है जिया नूर, हमारा बड़ा बेटा सुहेल पासा, जुहेब पासा, हमारा भतीजा समीर पासा, दीप पासा, आसिफ अली, असद अली, यही सब सुनना चाहते हैं।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: हमारे कौन से साथी से बात हो रही है, जान सकते हैं?
1: जी आदरणीय आरजे महोदया, रेणु तिवारी जी को राजू यादव, ग्राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरी लराठ मस्का हमीरपुर बुंदेलखंड की तरफ से ढेर सारा प्यार पहुंचेगा।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत दूर से आप हमसे जुड़े हैं, जरा महोबा के बारे में कुछ बताइए।
1: ये अलाऊ दल की नगरी बहना जी महोबा, जहाँ कीरत सागर है और जहाँ साल में एक बार कजली मेला लगता है और माँ चंद्र का देवी जी का मंदिर है और बहुत ऐसे तालाब हैं जो दर्शनीय हैं।
0: ऐतिहासिक जगह में आप रहते हैं और
1: जी
0: आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहते हैं।
1: बहना जी, मैं रात के कार्यक्रम में कॉल लगाता रहा लेकिन रात में शामिल नहीं हो पाया।
0: बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि श्रोता हमारे बहुत सारे होते हैं और जिसकी किस्मत बुलंद होती है उसका नंबर लगता है। आज आपका
1: और
0: कॉल लग गया है।
1: जी बहना जी, कॉल लग गया, मुझे बहुत खुशी होती है बहन।
0: बिल्कुल, आज जब आपका कॉल लग गया है, हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: हो मैं उतारा उजरा थम के बरस, हो मुझे महबूब के पास जाना है। ये वाला गीत सुनाइए।
0: बिल्कुल, गीत हम आपको

0: सुना रहे हैं। ये गीत अकेले सुनेंगे कि कुछ और नाम भी लेना चाहेंगे?
1: हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के श्री गुणवंत कड़ू जी हैं, श्री गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, राम संत विश्वकर्मा जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो इस समय बहना जी आपका कार्यक्रम दिल से सुन रहे।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए
1: जी बहना जी। प्रणाम नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश
0: हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं?
1: मैडम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलक भुजपुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैन बोल रहा हूँ मैम।
0: राजा कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है मैम, आप कैसे हो? आकाशवाणी रामपुर में सभी लोग कैसे हैं?
0: यहाँ भी सब ठीक है, ये बताइए आजकल क्या चल रहा है?
1: मैम देखिए, अपने मैं ऑटो चलाता हूँ मैम, और खेती
0: अच्छा,
1: किसानी भी करते हैं।
0: और साथ में हमारे प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। आज
1: बिल्कुल
0: आपका
1: मैम,
0: फोन
1: मैं तो
0: लगा
1: पुराना
0: है,
1: निमिष होता हूँ।
0: बिल्कुल आज आपका फोन लगा है। हेलो फरमाइश में, कौन सा गाना सुनवाते हैं आपको?
1: फिल्म रहेगी राज, गाने बोल रहे हैं कितना मैं चाहूँ तो तुझे। मैं कान नाम कुछ नाम बोल दूँ मैम?
0: बिल्कुल, नाम बोलिए।
1: मेरा भाई सईद हुसैन है, छोटा भाई आदिल हुसैन है, शहजाद हुसैन है, और दो मकसूद हुसैन है, दोस्त लाल मोहन अंसारी, दानिश सिद्दीकी, दोस्त आप और हम।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, हेलो फरमाइश।
0: हमारे कौन से साथी बोल रहे हैं?
1: जिला अमरोहा यूनिवर्सिटी पतिहाल से बाहरुल सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: बाहरुल भाई, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: बाहरुल भाई, आज एक बहुत ज़रूरी बात पर हम आपसे भी बात करना चाहते हैं और अपने श्रोताओं से भी बात करना चाहते हैं, और वो बात है नाम बदल कर कॉल करने की।
1: देखिए, एक बार इरफान भाई हैं कैनटीन मोहल्ले के, उन्होंने आपके पत्र बुला में हमारी शिकायत की थी। हम सुनने थे इस प्रोग्राम को लगभग 3 हफ्ते हो गए। तो देखिए, अगर हमारी कॉल लगती है तो हम अपनी कॉल में बात करते हैं। घर में हम 4 भाई हैं, तो 4 भाई जो है ना अपने अपने मोबाइल से सभी लगाते हैं कॉल, तो उनको ये लगता होगा बाहरुली असम बोल रहे हैं, तो ये शिकायत जायज नहीं।
0: देखिए, आपने अपनी बात रख दी है और बहुत से और भी श्रोता हैं कि जो नाम बदल कर कॉल करते हैं। ये केवल एक नाम की बात नहीं है, और भी कई श्रोता हैं, तो उनके माध्यम से, आपके माध्यम से हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी सही पहचान रखकर कॉल करें, और जो अन्य नाम है जो आपके परिवार के नाम नहीं है उन्हें भी शामिल ना करें, क्योंकि अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो उनसे कहें कि वो व्यक्तिगत रूप से हमसे बात करें, उनके नाम शामिल ना करें।
1: देखिए, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम अपनी कॉल पर खुद ही बात करेंगे, और घर में अगर 4 भाई हुए में से किसी की कॉल लगती है तो वही बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है सोचा वो बाहरुल असम डबल कॉल कर रहे हैं।
0: जी, आज आपका फोन लगा है। लो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: हाँ, जान तक पसंद का सवाल था, फिल्म का नाम रहेगा फूल बने अंगारे, उसमें गाने का गोरी गोरी कब से हुई जवानी, ये गाने के बोलते शुरू थे।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
1: आपका प्रोग्राम सुनने के मैम अपनी बारी का इंतजार रहे थे काफी टाइम से, मगर मैं जो रुक रुक कर

0: रहा था मोबाइल तो कुछ अपनी फरमाइश हम नहीं सुन पाए, पता नहीं आपने बोली या नहीं बोली।
1: जो भी ईमेल हमें प्राप्त होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल हम शामिल करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय सीमित होता है तो कुछ ईमेल रह भी जाती हैं।
0: हाँ देखिए, लगभग जब इंतजार करते रहते हैं 10-15 मिनट हो जाते हैं, तो सोता कुछ ऐसे हैं ईमेल दूसरा किसी भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जब नहीं बोले जाते नाम तो दूसरा किसी भी कर देते हैं, दूसरा किसी भी कर देते हैं। ईमेल के प्रोग्राम को मैं कह रहा हूँ 12-10 हजार में पेश किया था, तो प्रोग्राम को हम भी सुनने थे, लेकिन नेट मोबाइल का जो ना रुक रुक कर चल रहा था, किसान नहीं सुनने को मिल पा रहा था
1: जी।

ईमेल हमें मिली है और हमारे सामने से गुजरी होगी, तो आपका नाम जरूर शामिल हुआ होगा, क्योंकि इतने सारे नाम होते हैं, एक दो नाम याद करना थोड़ा सा रख पाना मुश्किल होता है। जब भी आपकी ईमेल हमें मिलती है या व्हाट्सएप मिलता है, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के नाम शामिल करें। आज आप फरमाइश बता चुके हैं, तो और समय ना लेते हुए फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो,
1: हेलो दीदी, नमस्ते। दीदी,
0: नमस्ते।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खनिया एक मीनार वाली मस्जिद के पास से आपके नियमित श्रोता शबनम अब्बासी आपसे बात कर रही हूँ।
0: शबनम, कैसी हैं आप?
1: दीदी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? स्टाफ के सभी लोग कैसे हैं?
0: यहाँ सभी ठीक हैं। शबनम, आजकल मौसम बहुत गर्म हो रहा है, तो
1: जी
0: ऐसे में कैसे अपना ध्यान रखती हैं आप?
1: दीदी, बस हम तो यही ध्यान रखते हैं, नींबू पानी पीते हैं और मतलब जो दिन में नहीं निकलते हैं 4 बजे 5 बजे के बाद ही निकलते हैं। और मैं तो सभी श्रोताओं से यही कहना चाहती हूँ कि पानी ज्यादा यूज करें, नींबू पानी पिए और ज्यादा गर्मी में नहीं निकलें।
0: बिल्कुल, देखिए शबनम, अपना ध्यान तो हम रख ही लेते हैं, लेकिन
1: जी
0: यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सी जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनके
1: जी
0: लिए गर्मी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। गर्मी सभी के लिए है, लेकिन हम अपने
1: जी
0: प्रयासों से अपना समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये जो
1: जी
0: जीव जंतु हैं ये निर्भर हैं हमारे ऊपर, तो इनके लिए
1: जी
0: क्या
1: दीदी,
0: करना
1: ऐसा
0: चाहिए?
1: भी होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं और हम तो यही करते हैं। हमारे मतलब जो दुमजले पे है, हमने इधर आधर से मतलब लकड़ियां गाड़ के ऊपर उसका छपरा छा दिया और वहीं पे हम पानी रख देते हैं, वहीं पे हम दाना डाल देते हैं दीदी।
0: बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और
1: जी
0: बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि वो भी कुछ
1: जी जी
0: ऐसा कर सकें कि हमारे

0: आसपास रहने वाले सभी प्राणी जीव जंतु सभी लोग खुश रहे। आज आपका फोन लगा है, हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: दीदी आपके लिए दो लाइनें हैं, कहते हैं तुझे याद हर पल करती हूँ, तुझे याद हर पल करती हूँ, तुझे देखकर ही मैं खुश रहती हूँ। दीदी
0: फरमाइश हमें बता दीजिए।
1: दीदी फिल्म का नाम है मुस्कान होगा, ने के बोले जाने मन चुप चुप के सारी दुनिया चुप।

श्रोताओं, हमारा और आपका आज का साथ यहीं तक। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात के वादे के साथ। आज रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों

0: चेहराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गाँव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
0: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद

0: बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
1: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संकेत।

अनुरोध। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आइए अब सुनते हैं ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है लावारिस।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने लावारिस फिल्म का ये गीत सुना। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

बेमिसाल। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। अब सुनिए ये गीत किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है पिघलता आसमान।

देवता फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर 3:55 पर अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर 3:55 तक FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। चाहेगी

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जयकुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने, उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है, इस पार्क में अकेले अकेले। लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यह झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपाओ? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हीं गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिपकर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो।
0: हाँ?
2: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से। और अब इस सांझ ठेले तक?
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?
2: हाँ हाँ, जाओगी
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
3: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मालवेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: का।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा।
3: बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
3: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई। हाँ? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में

0: पहुंचकर वे हुए घोर हताश। क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला। रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं। मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सुप, मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है। भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूं।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव चरित्र।
1: विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है।
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस।

0: चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
1: ओके सर।
0: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता।

0: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बाबू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
1: तो जेम्स तुम भी?
0: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
0: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
0: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
0: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
0: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
0: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
0: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
2: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा यह निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी यह सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूं इसी

0: क्षण, इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
1: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
2: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
0: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
2: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है? अरे ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे कैसे हुआ ऐसा?
2: क्या बात है?
4: क्या हुआ? उसका खून
2: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने।
2: पुलिस ने?
5: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
2: बांधो, बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
4: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
2: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए, पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, बेटे, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
2: अच्छा, आता हूं आता हूं आता हूं।
6: हैंड्स अप।
2: आप लोग
6: जुलूम अंदर देखो।
7: ये जल्दी
6: क्विक, कहां है ये सब?
7: तो आप ही जोसेफ पिस्ते हैं?
2: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
8: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
2: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
2: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
7: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
8: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
7: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
8: मिल गया सर।
7: क्या मिल गया?
8: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
7: यू आर राइट
8: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
7: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब सर बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
2: जी,
7: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
9: 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के
10: जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।

0: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
0: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल, व्हेन द कंट्री डेवलप्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information, Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and Gram Panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, This promise never loses its importance.
0: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. Addressing a public gathering at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, the Prime Minister extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village Paharpur. He announced that Paharpur would be developed as a Suryagram or solar village with renewable energy-based infrastructure and modern public services. The Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: साथियों, हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
0: Union Home Minister Amit Shah today reiterated the government's commitment to national security and effective border management, stating that efforts to curb illegal infiltration would continue with determination. Mr. Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has witnessed significant progress over the past 12 years in the fields of development, cultural rejuvenation, national security and global recognition. He said these years would be remembered as a period of transformative growth in the country's history. Addressing a public gathering after inaugurating the Sri Ambabai Temple development project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees, Mr. Shah said that the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Testing Agency NTA is conducting a nationwide mock drill as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination, which will be held tomorrow. The exercise, which began at 9 a.m., will continue through the day. More than 2.5 lakh security personnel are participating in the drill, being carried out across examination centres nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centres in the Delhi-Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh 9 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
2: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
3: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को यह दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद विच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट विच विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन एंड टुडेज फंक्शन Siddharth, it's not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi. The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
3: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. एंड आई वॉन्ट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The Kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
2: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ द वर्ड दैट यू यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल व्हिच इज सशक्त बनाना that Jee. is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question, and that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered. You are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein. Aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer. You can check your bank account. You can be a part of the Digital India Mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support. They did not have the support of the raw materials. They did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
2: Even is tarah ki jo takniki hai Vaibhav, aaj se ek jaisa ki tumne kaha ki ek dashak pehle is tarah ki parikalpana bhi aap nahi kar sakte the ki iske madhyam se aap kuch kar sakte ho. Aur digital jaisa ki aaj PM Kisan ke tahat desh bhar ke 9 crore 44 lakh se adhik किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे देश
0: मंच
1: में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा है
1: उनका
0: और
1: हार्दिक
0: वो
1: स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने के
0: ये लोगों की
1: अलावा आज
0: आवाजें
1: माननीय
0: उनको अभिवादन
1: प्रधानमंत्री
0: करते
1: श्री
0: हुए,
1: नरेंद्र
0: उनका
1: मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय की
0: खड़े हुए
1: कई
0: हैं, और
1: परियोजनाओं
0: माननीय
1: का
0: प्रधानमंत्री महोदय ने
1: शुभारंभ
0: अपना स्थान
1: उद्घाटन
0: ग्रहण कर लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, people craning their necks now. The national anthem and the national song.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhanmantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 क्रोर वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री

हिंदू अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट,
और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्र

अधिकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया।

जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन।

और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, किंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों,

आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है, इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलकर हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं, हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग

0: दिवस मनाएं, सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं आपताब और तरुणा।

0: नमस्ते आदाब, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, जिसमें हाजिर हूँ मैं आज आपका रेडियो साथी आफताब खान
1: और साथ हूँ मैं आपकी रेडियो मेजबान तरुणा जोगेश। आशा करते हैं चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए और दिल में लिए एक नई उमंग आप सभी सुन रहे होंगे हमारा आज का कार्यक्रम।
0: तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम का आज के सवाल के साथ। हमारा आज का सवाल है, किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रिक क्लस्टर सेंटर नामित किया गया?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया? तो साथियों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे आकाशवाणी रामपुर की फेसबुक पेज पर और आज अपलोड किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले अपने सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। साथियों, आपको याद दिला दें कि आज दिन है शनिवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं आपका अपना स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम फोन कॉल के जरिए आपसे जुड़ते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। तो हमेशा की तरह आज भी हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर 0595-2324-326 पर।
0: अरे तरुणा, आजकल सोशल मीडिया पर एक शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। कल तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके पास किसी तथाकथित सीबीआई अधिकारी का वीडियो कॉल भी आया था।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: सामने वाले ने कहा कि उसके नाम से कोई गैर कानूनी पार्सल भेजा गया है और अब वो डिजिटल अरेस्ट में है। बेचारा इतना घबरा गया कि कुछ देर के लिए उसे सच लगने लगा।
1: हाँ, और यही तो इन साइबर ठगों की सबसे बड़ी चाल होती है, पहले डर पैदा करो और फिर उसी डर का फायदा उठाओ।
0: लेकिन तरुणा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज होती है?
1: बिल्कुल भी नहीं आफताब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रक्रिया होती ही नहीं। कोई पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, आरबीआई या कोई भी सरकारी एजेंसी आपको फोन या वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती।
0: अच्छा, तो मतलब ये पूरा का पूरा फ्रॉड है?
1: जी हाँ, साइबर अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, कस्टम अधिकारी या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं और लोगों को डराते हैं।
0: हाँ, और वो अक्सर कहते हैं आपका आधार कार्ड गलत काम में इस्तेमाल हुआ है,
1: या कहते हैं कि आपका बैंक

0: अकाउंट संदिग्ध है
1: या फिर कहते हैं आपके नाम से गैर कानूनी पार्सल पकड़ा गया है,
0: और फिर घंटों वीडियो कॉल पर रख कर व्यक्ति को मानसिक दबाव में डालते हैं।
1: यानी ये लोगों को इतना डरा देते हैं कि वे बिना सोचे समझे उनकी बात मान लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, कई बार लोग डर के कारण अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी या यहाँ तक कि अपनी जमा पूंजी भी ठगों के खाते में डाल देते हैं।
1: ये तो सच में चिंता की बात है तरुणा, लेकिन अगर किसी श्रोता के पास कॉल आए तो उसे क्या करना चाहिए?
0: देखो, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पिन या बैंक जानकारी नहीं देनी चाहिए। किसी भी तरह का पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए और कॉल को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। और यदि मामला संदिग्ध लगे तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
1: यानी तकनीक जितनी सुविधाजनक है उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है।
0: बिल्कुल, आज के दौर में जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिस तरह हम अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हैं, उसी तरह डिजिटल दुनिया में भी जागरूकता का ताला लगाना जरूरी है।
1: तो दोस्तों याद रखिए, डराने वाला हर फोन असली नहीं होता,
0: और कोई भी सरकारी एजेंसी आपको वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती।
1: सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साइबर अपराधियों से बचें।
0: बिल्कुल साथियों, तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पर साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी आज जानेंगे हम बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर आप जुड़ गए हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर, और जानते हैं आज का दिन क्यों है इतना खास।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: साथियों कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपने घर से निकले और फिर कभी वापस ही ना लौट पाए। अपने आंगन की मिट्टी, अपने शहर की गलियां और वो बचपन की यादें, सब कुछ पीछे छूट जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि परिस्थितियों ने आपको अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
3: साथियों आज कुछ खास है आज में हम बात कर रहे हैं विश्व शरणार्थी दिवस की, जो हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ये दिवस उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और उम्मीदों को समर्पित है जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम शरणार्थी या रेफ्यूजीज कहते हैं।
0: दोस्तों घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं होती, घर वो जगह होती है जहाँ हमारी यादें रहती हैं, जहाँ हमारे सपने रहते हैं, जहाँ हमें सुरक्षा और अपनापन मिलता है।
3: बिल्कुल ठीक, लेकिन जब किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो वो केवल एक स्थान नहीं खोता, वो अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खो देता है।
0: इसके बावजूद शरणार्थी हार नहीं मानते, वे नई जगहों पर नई उम्मीदों के साथ जीवन शुरू करने का प्रयास करते हैं। उनका साहस हमें सिखाता है कि सब कुछ खो जाने के बाद भी उम्मीद को जीवित रखा जा सकता है।
3: साथियों विश्व शरणार्थी दिवस का उद्देश्य केवल उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं है, बल्कि ये संदेश देना भी है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं का भी हो, सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का अधिकार रखता है।
0: आज के दिन आइए हम संवेदनशीलता, करुणा और मानवता के मूल्यों को याद करें और उन लाखों लोगों के संघर्ष को सलाम करें जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद एक बेहतर कल का सपना देख रहे हैं।
3: क्योंकि सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, लेकिन मानवता को नहीं। विश्व शरणार्थी दिवस पर आइए एक ऐसे संसार की कल्पना करें जहां हर व्यक्ति को सुरक्षित जीवन, सम्मान और अपनापन मिल सके।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: तो साथियों, चलिए अब बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे और शुरू करेंगे आज का स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। आइए जानते हैं आज हमसे सबसे पहले कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स,
3: नमस्कार। मैं जीशान भारती बात कर रहा हूँ, ग्राम सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से।
2: नमस्कार जीशान जी, कैसे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा था
2: जी। कैसा लगा आपको हमारा अभी तक का कार्यक्रम?
3: मुझे युवाणी के सभी प्रोग्राम पसंद आते हैं और इसमें जो आप जनरल नॉलेज के माध्यम से सवाल आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूछते हैं वो बहुत अच्छा है। और कुछ खास है आज, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चिट्ठी आई है, प्रोग्राम भी आपका बहुत ज्यादा बेहतर लगता है
2: जी। बिल्कुल जी शान जी, यही हमारा प्रयास रहता है कि आप सबको हमारे कार्यक्रम पसंद आएं। और जीके के जो भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं आज के सवाल नामी सेगमेंट में, वो हमें भी बहुत खुशी होती है कि आप सबको इतनी जानकारी है और सभी लोगों के जवाब एकदम सटीक आते हैं। और चिट्ठी आई है के माध्यम से आपका प्यार हमें हम तक पहुंचता है, हमें बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग इसी तरह हमसे कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हमारे हमें उत्साहित करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं और अच्छा करने के लिए
3: जी।
2: तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: आज मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम है राज और गीत के बोल हैं आपके प्यार में हम सबरने लगे, और इस गीत को सुनना चाहेंगे मेरे साथ करूला मुरादाबाद से अय्यूब खान
2: जी। बिल्कुल, चलिए साथियों बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे इनका सुनते हुए इनका ये पसंदीदा गीत जी।

0: चलती रही। लेकिन सर जी एक बात है, इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कैसे, क्योंकि जो मेरे ये रेडियो पहले पकड़ता था शाम को, अब शाम को पकड़ता नहीं है, पता ना क्या हो गया। पहले खूब सा पकड़ता था शाम को, अब रेडियो भी मैं सुनता हूँ लेकिन जो है रेडियो सुनने नहीं मिल पाता है आराम से
1: जी जी सतीश जी,
0: हल्का
1: हम यहाँ से ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से कोई दिक्कत होगी
0: वाला।
1: तो। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
0: आज दिल फिल्म का सुनवा दीजिए वो प्रिया प्रिया।
1: ठीक है, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो हेलो फ्रेंड,
0: जी, कौन से श्रोता साथी से हमारी बात हो रही है?
1: मुरादाबाद से रणबीर सिंह।
0: जी रणबीर सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: सही हैं आप? सुनाइए मैम।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आकाशवाणी रामपुर के परिवार में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
1: जी बहुत अच्छे रहने चाहिए मैम सब।
0: जी रणबीर जी, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कल तारीख है 21 जून यानी योग दिवस।
1: योग दिवस
0: जी, तो योग दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बस यही मैम के सब योगा करना चाहिए
0: बिल्कुल
1: जिससे सेहत सही रहती है इंसान की,
0: जी, बिल्कुल
1: और जो भी हमें बातें आती हैं हम दूसरे को बताएं।

0: इससे और भी लाभ लाभ उठा सकते हो।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने रणबीर जी। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: सिर्फ तुम का गाना है मैम, जिंदा रहने के लिए तेरे साथ।
1: अच्छा ठीक
0: जी
1: है
0: मैम कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट, कुछ
1: जी
0: कहना चाहते हैं?
1: जी
0: जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए,
1: जी
0: मिले तो मुलाकात, बिछड़े तो याद बन गए।
1: वाह वाह क्या बात है
0: कुछ कुछ दोस्त धीरे धीरे फिसलते गए,
1: जी
0: पर जो दिल से न गए वो आप बन।
1: जी बहुत अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई। चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे आपकी पसंद का ये गीत सुनते हुए।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: जी नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा,
0: जी।
1: जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ। और मुझे ये गाना जो अभी चल रहा था ना फिलहाल,
0: जी जी
1: जिंदा रहने की कसम, एक मुलाकात जरूरी, बहुत अच्छा लगा सर
0: जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी।
0: तो
1: उस गाने को मैं साथ साथ में गुनगुना रहा था
0: जी बहुत अच्छी बात है प्रेम जी।
1: जी।
0: प्रेम जी, जैसे कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है इस टाइम, तो जैसे कि इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी गर्मी लगती है उतनी ही जितने की हमें लगती है, तो
1: जी बिल्कुल
0: क्या आप पशु पक्षियों का भी ध्यान रख रहे हैं इस गर्मी?
1: बिल्कुल, पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं। हमारे पास तो पशु भी है, भैंस के 4-5 भैंस है, तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनको ठंडी छाँव में बांधते हैं।

0: पानी पिलाते हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: उनको हरा चारा भी डालते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। और आपके इस कॉल के माध्यम से और भी हमारे श्रोता साथियों को पता चला होगा कि कैसे हम भी इन पशु पक्षियों का इन गर्मियों अपना ध्यान रख सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जैसे पंखे जनरल होते हैं ना, हमारे घर के आसपास से दो बड़े बरगद के पेड़ हैं,
1: जी
0: तो उनके आसपास में हमने पानी के टब भर के रखे हुए हैं, तो वो पक्षी आते हैं उनमें पानी पीते हैं, और आसपास में मतलब चावल के दाने भी बिखे रखे हैं, तो वो वहाँ पे चावल के दाने भी खाते हैं।
1: बहुत खुशी हुई प्रेम जी जान के। तो प्रेम जी आप कौन सा
0: जी
1: गाना
0: जी
1: सुनना चाहेंगे आज?
0: जी बताना चाहूंगा, मौसम हमारे यहाँ बदल चुका है, बारिश होने जैसा आसार हो रहे हैं
1: जी
0: और पानी भी गरज रहा है, तो उसके लक्ष्य में सुनना चाहूंगा मैं गुरु फिल्म का बरसोरे मेगा मेगा।
1: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
0: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: जी नमस्ते। हेलो फ्रेंड,
0: नमस्ते। कौन से श्रोता साथी से बात हो रही है?
1: मैं दीदी पक्का जोड़े पम्मी।
0: जी पम्मी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आप ठीक हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: आकाशवाणी में?
0: आकाशवाणी में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और
1: मैं सुबह से शाम तक आपको प्रोग्राम सुनता हूँ सब।
0: अच्छा, बहुत अच्छा।

0: अच्छी बात है ये, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम बहुत दिल से सुनते हैं।
1: जी।
0: तो कैसे लग रहे हैं आपको आकाशवाणी रामपुर के सभी
1: बहुत
0: कार्यक्रम?
1: बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे प्रोग्राम।
0: जी अच्छा, पम्मी जी, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आजकल
1: जी
0: गर्मी बहुत हो गई है,
1: जी
0: तो इस टाइम पर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हम सभी को महसूस होती है और इस कारण हम बहुत बीमार भी पड़ जाते हैं कई बार। तो आप क्या कहना
1: इसलिए
0: चाहेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते
1: पानी
0: हैं?
1: पिए, रसना
0: जी
1: पिए, ठीक है,
0: जी
1: और सरगंजी पिए,
0: बिल्कुल
1: और चिड़ियों को और उनको कौओं को दे डालिए दाना और पानी पिलाइए उनको।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें साथ साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जी तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: दीदी बता दीजिए, बंधन जिलों के बंधन।
0: जी चलिए ठीक है
1: मैं कुछ लोग नाम लू दीदी जी,
0: जी बिल्कुल।
1: गांधी समाधि हाजी गफ्फार जी हैं, नासिर भाई रिक्शा वाले हैं, नब्बू भाई पान वाले हैं, और फारूक भाई सिकर वाले हैं, छिपियान में से निहार छिपियान में से।
0: जी चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे इनकी पसंद का ये गीत सुनते हुए।
1: ठीक है जी, नमस्ते।
2: Good morning.

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हमारे कौन से साथी से
1: मैं
0: हमारी बात हो
1: जामली
0: रही है?
1: समाज रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी हाजी गफ्फार खान जी, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के लोग परिवार के क्या हाल हैं?
0: हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और आकाशवाणी परिवार में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाजी जी, जैसे कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ऐसे में आप अपना और अपने परिवार का कैसे ख्याल रख रहे हैं?
1: जी घर से बाहर शाम को ये निकले और शिकंजी वगैरह जैसे गन्ने का रस है, आम का पन्ना है, ये पिए।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अपने साथ साथ हमें अपने पक्षियों का और जानवरों का भी आसपास के ख्याल रखना है।
1: हाँ बिल्कुल, इनको दाना पानी ऊपर छत पर रखें।
0: जी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हाजी जी, जैसे कि कल 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, ये हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है।
0: जी, तो हाजी जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं राम लखन सिंह का गाना सुनना चाहूंगा। गाने के बोल रहे हैं, मुझे सुनते हैं कितने किलो, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, नवाब इकराम अली प्रेमी, मसूद हुसैन, शबनम अब्बासी, शर्मिल अंसारी, हबीब अहमद इदीस, गुलाब शाह, पक्के बात से पम्मी और आकाश रस्तोगी, ये सब सुनना चाहेंगे।
0: जी, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: शुक्रिया आपका।

0: तो साथियों, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। साथियों, अब वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का सही जवाब और साथ ही जानेंगे कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने आज सही जवाब देकर बाजी मारी है। तो साथियों, आपको याद दिला दें कि आज का सवाल था, किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया है? और इसका सही जवाब है पतंजलि विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। तो आइए जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब। जॉन डी कास्ट्रो, आर सी कांबड़े, पुंजाजी नावकर, नंद कुमार ठाकुर, सुदर्शन शाह, दिनेश वर्मा, हीरामणि वर्मा, मोहम्मद रफीक पवार, अजीत कसाना, नजमुल हुडा, लालगिरी गोस्वामी, मसरूर हसन, दिग्दर्शन गौड़, मोहम्मद यासीन अनजान, उत्तम कुमार भगत, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, वलीउल्लाह अंसारी, मुजफ्फर अली खान, धर्मेंद्र चिपा, विठ्ठल सुरोशी, दीपेश वर्मा, बलवंत कुमार वर्मा, सिद्धार्थ कोंडाने, विनोद मुनत, बी कमल, हुकुम करमरकर, राधेश्याम पांडे, राजू मिगलानी, राष्ट्रपाल गजभैये, राजवीर सिंह यादव, फागुराम यादव, उत्तम सिंह, आसिफ चौधरी, शकील अहमद इदरीशी, निसार सलमानी, प्रवीण सोनी, जाकिर मंसूरी, धीरज भाई रबारी, सोहन जोशी, मोहम्मद आमिर अंसारी, हाजी गफ्फार खान, लाल मोहम्मद अंसारी, प्रवीण चौहान, नाहिद खान, बीएल ढाकर, मोहम्मद सैयद अब्बासी, गजानन येले, सुरेश गगनेजा, एस के अलबक्स, कैलाश फूलमाली, आकाश रस्तोगी, शाहजी भोटके, भुवन प्रकाश, जीसान वारसी, बीपी गौतम, शारून नूर अंसारी, महाराज कीर्तनपुरी, रवि रस्तोगी, विजय सुरलकर, अरविंद कुमार, सोहन जोशी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, पूनम दीक्षित और मुकेश कश्यप। तो साथियों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाड़ी अनुभाग द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com। साथियों, इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: साथियों, पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। पिन संख्या 244901। ईमेल है patramila@rampur.com। आप ईमेल की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, patramilaairampur@gmail.com। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर है 9410087876। तो दोस्तों, कल को फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई आवाज़ और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे और यूं ही आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम सुनते रहेंगे। अब दीजिए अपने रेडियो साथी तरुणा जोगेश
1: और आफ्ताब खान को इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे आफताब और तरुणा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अवधेश कुमार गौतम।
1: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के प्रसारण। श्रोताओं, संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं अनिल किशोर और मीना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रांत चौधरी।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुन हमारे सभी भैया बहन को आपकी बहन मीना
1: और अनिल भैया की राम राम, राम राम।
0: और सुनाओ अनिल भैया, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मीना बहन, हम तो अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं ना, वे भी अच्छी तरह से होंगे। और आप अपनी बताओ।
0: हम भैया अच्छे से हैं और हम भी उम्मीद करते हैं हमारे किसान भैया बहन ठीक हों और अपनी खेती बाड़ी अच्छे से करते रहें। भैया
1: बिल्कुल, देखो जिस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है।
0: हाँ भैया बिल्कुल पड़ रही है।
1: और खेती बाड़ी को हमारे सभी किसान भाइयों के लिए विशेष ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में होता है कि जो फसलें हैं ना वे धूप की तपिश से झुलस सी जाती हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और बहुत सारे किसान भाइयों की जो फसलें हैं उनकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ भैया,
1: ऐसे में हमारे किसान भैया सबसे पहले तो अपने खेतन में फसलन में नमी बनाए रखें।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और मीना बहन सच कहें तो ना, खेती में लागत बढ़ रही है
0: भैया, बहुत लागत बढ़ रही है आजकल देखो जाए तो।
1: और किसान चाहते हैं कि कम खर्च में अच्छी पैदावार मिले, ऐसे में नैनो यूरिया किसानों के लिए एक नई उम्मीद सामने आओ।
0: हाँ भैया,
1: और नैनो यूरिया से देखो होत का है कि आपको जो खर्चा है ना बाको कम करो जा सकते।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और अनिल भैया, आजकल हम तो जय देख रहे हैं गांव-गांव में एक नाम खूब सुनाई दे रहा हुआ ना कि नैनो यूरिया।
1: बिल्कुल, तो नैनो यूरिया

0: को जो हमारे किसान बहन के लिए किस तरह से उपयोग करने हैं और हमारे किसान भैया किस तरह से जाको प्रयोग करें और किस तरह से ना करें, जब बात को हमारे किसान भैया ध्यान रखें।
1: अच्छा भैया, हाँ।
0: नैनो यूरिया को छिड़काव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छिड़काव करने से ही आपको नैनो यूरिया को लाभ मिलेगा।
1: अच्छा भैया,
0: और मीना बहन देखो, हमारे बहुत सारे किसान भैया जो नैनो यूरिया डालते हैं ना, उन्हें तजुर्बा भी हो कि किस तरह से वे अपने खेतन में लगावें। और मीना बहन यही वजह है कि वैज्ञानिक उन्हें नैनो यूरिया भी विकसित करो, और इसकी खासियत यह है कि बहुत ही कम मात्रा में पौधों को पर्याप्त नाइट्रोजन मिल जाती है।
1: हाँ भैया,
0: और इससे जो है उर्वरक जो है बहुत ही बेहतर तरीका से अपने प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भैया देखो जाओ कि आपने जो है 45 किलो को कट्टा लेके आते हैं।
1: हाँ भैया, लेके आते हैं।
0: बहुत सारा वजन है, उसे ला दोगे आप, उसे छिड़काव करोगे, तो देखो मीना बहन टाइम खर्च होने।
1: हाँ भैया, वो तो है।
0: तो इसलिए क्यों ना हम थोड़ी सी मात्रा को अगर स्प्रे के रूप में अगर हमारे अपनी फसलों को दे दें तो खुद का है वो तुरंत के तुरंत असर करती है।
1: हाँ भैया, बिल्कुल।
0: और अगर आप छिड़क के करेंगे तो आपको देखने में आ गई कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे असर करती है।
1: हाँ भैया, और
0: तो जैसे ही नैनो यूरिया को जो हमारे किसान भैया छिड़काव करते हैं तो उन पत्तियों पर जब जाता है पौधा के, तो खुद का है कि वो बहुत जल्दी असर करता है।
1: हाँ।
0: फसल की बढ़वार अच्छी होती है।
1: हाँ भैया,
0: तो कम खर्चा में कम लागत में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है हमारे किसान भैया के लिए, तो ऐसा ना करें कि अपनी मेहनत बचाने के लिए पैसा भी खर्च करें और फसल की भी अच्छे तरीका से भरपाई ना हो पा।
1: हाँ भैया, और पिछले दिनों मैं भैया जैसे ना गांव की चौपाल पर गई थी ना।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ कई किसान भैया नैनो यूरिया के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ किसानों ने तो बताया कि उन्होंने अपने खेत में इसका प्रयोग किया,
0: बिल्कुल,
1: और फसल की बढ़वार अच्छी दिखाई दी भैया।
0: तो मीना बहन देखो, हमारे जिन किसान बहन ने जो छिड़काव करो ना, वो सीधे पत्तियों पर हमने बताई दे कि पहुंच जाता है और पोषक तत्वों को जल्दी से ग्रहण कर लेता है।
1: हाँ भैया, बिल्कुल।
0: ऐसे में होता का है कि जो पौधे होते हैं ना वे हरे भरे रहते हैं।
1: हाँ,
0: और उनकी बढ़वार जो है वो बेहतर तरीका से हो जाती है।
1: हाँ भैया, और जैसे किसान भैया बहनन को ये भी जानना जरूरी है कि नैनो यूरिया का प्रयोग कब और कैसे किया जाए भैया। केवल बोतल खरीद ले लो ही पर्याप्त ना है भैया,
0: बिल्कुल
1: सही समय और सही विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है भैया।
0: बिल्कुल, सामान्य तौर पर 500 मिलीलीटर जो नैनो यूरिया होती है ना, उसकी एक बोतल को लगभग 100 लीटर पानी में मिलाकर और छिड़काव कर दें तो हमारी जो फसल है वो अच्छी बढ़वार करेगी, और दूसरों छिड़काव अपनी कोई भी फसल है उसको फूल आने से पहले ही कर दें, जिससे कि बालियां बनने अच्छी बने और उनकी फसल अच्छी हो।
1: हाँ भैया, बिल्कुल। और नैनो यूरिया को छिड़काव भैया ना करते समय ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मौसम साफ हो, तेज धूप या बारिश की संभावना ना हो भैया।
0: सही कहा।
1: और छिड़काव अगर बारिश की अगर मौसम है ना भैया, अगर ऐसा दिख रहा हो कि बारिश होने वाली है तो छिड़काव के लिए टाल दें भैया। बिल्कुल
0: बिल्कुल मीना बहन। और एक खास बात जो है कि हमारे किसान बहन को एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि समय को बहुत महत्वपूर्ण।
1: हाँ बिल्कुल भैया, हाँ।
0: हमारे किसान भैया सुबह या शाम को ही नैनो यूरिया को छिड़काव करें, इससे क्या होता है कि जो इसमें जो रसायन है जो बैक्टीरिया है उसमें जो ठंडे मौसम में जब करते हैं ना तो पत्तियों पे उसको असर जल्दी होता है।
1: हाँ भैया, बिल्कुल।
0: तभी हम सुबह और शाम को कहते हैं ज्यादा तेज धूप में इस कभी भी स्प्रे ना करें।
1: हाँ भैया,
0: होता का है कि देखो तेज धूप में जब आप स्प्रे करेंगे तो जो पत्तियां हैं वो तेज धूप के वजह से गर्म पड़ते हैं, और आप जब छिड़काव करेंगे तो आपको भी धूप लगेगी।
1: बिल्कुल लगेगी भैया।
0: तो ऐसे में आपको और आपकी जो फसल है दोनों को ही नुकसान है।
1: हाँ भैया, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हमारे किसान भैया जो है समय को ध्यान रखें, सुबह शाम ही छिड़काव करें।
1: हाँ भैया,
0: आप सुबह 8 बजे से और 10 बजे के बीच अपनी फसल पर छिड़काव कर लें।
1: हाँ भैया, और एक बात जो है हमारे सभी किसान भैया बहन को पसंद आता है कि वह इसकी आसान जैसे आसान ढुलाई है, जो बोतल वारी करके लाता है नैनो यूरिया, बाकी ढुलाई आसान है। जहाँ पहले एक बोरी का जैसे एक कट्टा खाद को लेके आते तो वह ढोने में बहुत दिक्कत होती भैया। अब हम अपने अगर एक बोतल ले आए तो वह ढोने उना पड़ रही है।
0: सही बात,
1: आसानी से अपने हाथ में ले आया, थैला में धरी खेत में ले चले गए।
0: बिल्कुल, आपके कहने को मतलब जब है कि आप क्यों ज्यादा वजन उठा पोगे जब कम वजन में काम चल रहा हो, तो ऐसे समय में मेहनत और लागत दोनों की ही बचत करी जा सकती है, साथ ही साथ खेत में अतिरिक्त यूरिया जाने की भी संभावना ना रहती है।
1: हाँ भैया, बिल्कुल।
0: यही कारण है कि धीरे धीरे हमारे जो किसान भैया हैं इसकी ओर आकर्षित हों।
1: हाँ भैया, और लेकिन किसानों को ये भी समझना चाहिए भैया ना कि नैनो यूरिया का प्रयोग कृषि विभाग और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही करें। हर फसल और हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं भैया।
0: बिल्कुल, और फसलें भी अलग अलग हो सकती हैं।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: उनकी जरूरत भी अलग अलग हो सकती है।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: तो भैया देखो, बड़ी सूझबूझ के साथ खेती करने हैं मीना बहन। हमारे जो किसान भैया हैं, जब बात को विशेष तरीका से देख लें कि जो फसल है उनकी, बाकी जो उसको जरूरत है नाइट्रोजन की,
1: हाँ
0: कितनी मात्रा में है, इस तरह से उसको देख कर ही उतनी ही मात्रा में उसको नाइट्रोजन दें। ऐसा ना है कि आपने जरूरत से ज्यादा अगर यूरिया को छिड़काव कर दो,
1: हाँ,
0: तो जाहिर सी बात है कि आपके पौधन की पत्तियां जो है वे
1: झुलस जाएंगी। हाँ भैया,
0: पौधा को जो वानस्पतिक विकास है वो प्रभावित हुए और बढ़वार कम हो जाएगी,
1: कम हो जाएगी भैया।
0: तो जब बात को गांठ मान लें कि कभी भी स्प्रे करें, किसी भी चीज को स्प्रे करें सीमित मात्रा में।
1: हाँ, मतलब जितनी हमारी खेती को जरूरत है उतनी ही हमें छिड़काव करना चाहिए, चाहे हम अपने यूरिया जैसे कट्टावारी लेके आ रहे हैं या फिर नैनो यूरिया को छिड़काव करना है तो।
0: बिल्कुल।
1: और भैया जैसे कुल मिलाकर कहा जाए तो नैनो यूरिया आधुनिक खेती की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। इससे उर्वरक क्षमता बढ़ने में और लागत कम करने में और पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिलती है भैया।
0: बिल्कुल, और सभी किसान भैया बहन के लिए जो है संदेश यही है कि नई तकनीकों को समझें और सही जानकारी हासिल करें और वैज्ञानिकों के तौर तरीकों को सही खेती करेंगे तो हमारे जो किसान भैया हैं अपने फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, फसल की लागत को कम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे किसान भैया के लिए जानकारी ना होती है, तो जानकारी उनके लिए हमारे देखो जाते हैं कि जब अभी हमने नैनो यूरिया की तो बात कर ली,
1: हाँ भैया कर ली,
0: लेकिन इसके अलावा हमारी फसल में कीट आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है,
1: हाँ।
0: तो उनको कैसे कर रोको जाए जा बारे में भी हमारे किसान बहन के लिए जानकारी होनी चाहिए,
1: जरूर होना चाहिए भैया।
0: तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे किसान बहन के लिए आज हम एक जानकारी भी लेकर आए हैं। विषय कहा है मीना बहन?
1: हाँ, देखो भैया, हम अपने किसान भैया के लिए एक भेंट वार्ता लेके आए हैं और भेंट वार्ता का विषय है खरीफ फसलों में कीट और रोग नियंत्रण।
0: जब इसे की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा जी। लेकिन मीना बहन,
1: हाँ भैया,
0: जानकारी से पहले हम सुन लेते हैं एक संदेश।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: किसान साथियों, हम सभी लोग मौसम के हिसाब से फसलें अपने खेतों पर उगाते हैं। आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों की बारे में कि जो फसलें खेतों पर खड़ी हैं या जिनकी बुआई होने वाली है, आगे उसमें कुछ काम करने हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, कौन कौन से कीड़े लगते हैं, जिनका नियंत्रण कैसे किया जाए, उनसे कैसे बचाव किया जाए, जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल का उत्पादन अब इसी बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी फसल की देखभाल कैसे की है। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि खरीफ फसलें हैं और इस समय खेतों पर खड़ी हैं या फिर उनकी बुआई होने वाली है?
4: किसान भाइयों, अगर खरीफ फसलों की बात करें तो उस समय मूंगफली की फसल खड़ी हुई भी है और आगे किसान भाई उसकी बुआई भी करेंगे। इसके साथ साथ उड़द की बुआई कुछ किसानों ने कर ली है, कुछ लोग करने वाले हैं। साथ में मक्का फसल खड़ी हुई है और उसमें भी समस्याएं आ रही हैं।
3: जी जी, हम बात करेंगे पहले मूंगफली के बारे में, तो कौन सी समस्याएं आती हैं जो कॉमन हैं और जिसके लिए किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है?
4: किसान भाइयों, जैसा कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है मूंगफली में, सफेद गिरार जो कीट है, ये जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इसकी जो सूंड़ी होती है 5 सेंटीमीटर लंबी आकार की होती है, सफेद रंग की सूंड़ी होती है, दूधिया रंग की, और इसका जो मुंह होता है लाल रंग का होता है, और ये जो सूंड़ी और बाहर निकालेंगे तो सी आकार की, अंग्रेजी के सी अक्षर की आकृति बना लेती है,
3: मुड़ी हुई होती है,
4: और ये इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके फसलों को नुकसान करती है। चूंकि ये भूमिगत कीट है, इसकी जो प्रोड़ प्राय पहली बरसात जब होती है उस समय निकलना शुरू होते हैं। अब जब निकलने के बाद ये पीपल बरगद ऐसे वृक्षों पे आश्रय लेते हैं और वहां पे जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने के बाद जो इसकी मादा होती है खेत में आके जमीन में अंडे दे देती है। अंडा जब फूटता है तो उसमें से गिडार निकलती हैं जो जड़ों को खा के नष्ट कर देती हैं। तो ये काफी अधिक नुकसान करती है। इसमें खेतों में बीच बीच में रिक्त स्थान बन जाते हैं, प्रति हेक्टेयर जो पौधों की संख्या काफी कम हो जाती है, तो आर्थिक रूप से काफी किसानों को नुकसान होता है।
3: ये जब फसल बोई जाती है मूंगफली की या खड़ी होती है तब नुकसान पहुंचाते हैं, और वैसे खेत में ये इनकी उपस्थिति बनी रहती है, तो वहां कैसे खत्म करें ताकि ये अगले आने वाले सीजन में नुकसान न करे?
4: इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई ये करना क्या है कि जैसे इसकी जो अवस्थाएं होती हैं जमीन में पड़ी रहती हैं, पहली बरसात में ये इसके जो प्रोड़ निकलते हैं, जो कीट निकलते हैं, जो पोषक पौधे हैं जैसे जामुन है, पीपल है, बरगद है, इन पे करते हैं, तो इन पे अगर हम स्प्रे कर दें, कीटनाशी का स्प्रे कर दें, तो उनकी संख्या हम उस समय प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो नीम पे भी काफी असर करता है, तो नीम की टहनियां अपने खेतों के आसपास लगा दें उस समय, और उस पर छिड़काव करके भी हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रकाश प्रपंच है, लाइट ट्रैप या लालटेन को किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख के उसमें पानी भर के मिट्टी का तेल एक ढक्कन डालने के बाद अगर उसको रात में रख देते हैं तो जितने भी कीट हैं वो उसमें पानी में आ जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे, तो हमारी मुख्य फसल बच जाएगी।
3: और कौन सी समस्या आती है बीमारी की हम बात करें तो मूंगफली में?
4: मूंगफली में कीटों की अगर बात करिए, दूसरे जो कीट हैं जिसमें थ्रिप्स या जैसिक नाम का कीट होता है, तो ये रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो पत्तियों से रस चूसते हैं, पत्तियां सुकड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है, तो उसके लिए इमिडाक्लोपिड नाम का रसायन है, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से हम स्प्रे करेंगे तो आसानी से रस चूसक कीटों को प्रबंधित कर सकते हैं। और अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो एक बीमारी इसमें मुख्य बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं टिक्का रोग। टिक्का रोग में भूरे रंग के पहले पत्तियों पर धब्बे बनते हैं गोल गोल, अब बाद में ये ज्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर पूरी पत्ती काला होकर सूख जाती है। तो ये बीमारी काफी अधिक नुकसान करती है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का रसायन है, 50% का रसायन लेना है, 300 ग्राम रसायन को प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के हमें छिड़काव करना है। इसके साथ साथ एक अन्य बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलर रॉट, तना गलन, जो जमीन से लगा हुआ पौधे का तना होता है, तो उसमें भूरे रंग का एक छल्ला बनता है, बाद में पूरा जो गल जाता है और वहां से पौधा गिर जाता है, जड़ों को उखाड़ के देखेंगे तो जड़ें पूरी काली दिखाई देंगी। ऐसी जो पौधे हैं उनसे पौधे जो पानी नहीं ले पाते हैं और साथ में जो पोषक तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पूरा पौधा सूख जाता है और हमें आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो इसके लिए जो रसायन है थायोफेनेट मिथाइल, ये रसायन 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो हम इसको भी प्रबंधित कर सकते।
3: उड़द की फसल भी आपने बताई कि इस समय खेतों पर खड़ी भी है और आगे भी किसान भाई इसकी बुआई करेंगे, तो उसमें कौन कौन से रोग और कौन कौन सी बीमारियां लगती है?
4: किसान भाइयों, जो इसमें मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाला जो कीट है इसे हम कमला कीट के नाम से जानते हैं। कमला कीट आप लोग जानते हैं कि ये पीले रंग का कीड़ा होता है, उस पर काले रंग के बाल पाए जाते हैं। ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर पूर्ण अवस्था होती है, तो 5 सेंटीमीटर तक का आकार में हो जाता है। ये पत्तियों को शुरू की 2 अवस्थाओं को प्राणहरिम खुरच के खाता है, क्लोरोफिल को खा जाता है, और पत्ती उसमें ऐसे पेपर की तरह हो जाती है, उसमें केवल ऐसे लगता है कि जाल बन जाता है, केवल झिल्ली नुमा पत्ती हो जाती है, उसका हरावा खत्म हो चुका होता है, तो बाद वाली अवस्था में पूरी पत्ती को संपूर्ण पत्ती को खा के नष्ट कर देती है, केवल डंठल बचता है। तो ये काफी नुकसान करती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए जो शुरू की जो अवस्थाएं होती हैं, तो ये गुच्छे में रहती है, एक ही झुंड में अपने बच्चे रखती है, अपनी सुनियां इकट्ठी करके रखती है। ऐसी अवस्था में ऐसी जो ग्रसित पत्तियां हैं उनको सुबह के समय खेत में जाके उनको तोड़ के किसी पन्नी में भर के उनको जला के नष्ट कर दें, सबसे बढ़िया तरीका है ये। अगर रसायन की बात करें तो इसमें एक रसायन इंडोक्साकार नाम का रसायन आता है, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे। इसके अलावा एक अन्य रसायन है जिसे हम लोग बोलते हैं इमामेक्टिन, ये जो रसायन है 5% में आता है, 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने से हम इसको कमला कीट को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या आती है इसमें, जिसको येलो बिन मोज़ेक नामक बीमारी बोलते हैं। ये बीमारी प्रमुख बीमारी है, इसमें पत्तियां चितकबरी हो जाती है, इसमें जो पौधे का हरा भाग होता है उसमें पीलापन लिए हुए धब्बे से बनना शुरू हो जाते हैं, बाद में पूरा पौधा पीला हो जाता है। ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें फली भी नहीं बनती है और उसकी बढ़वार रुक जाती है। ये वायरस से फैलने वाला रोग है और इसको फैलाने वाला जो कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं सफेद मक्खी रस चूसक कीट है। ये पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है और पौधे में वायरस को भी फैला देता है। तो इसके वायरस का कोई वैसे कोई प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा रसायन नहीं है जिसको हम प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन उसको रोग फैलाने वाला रोग बाहक है उसको हम प्रबंधन करने के लिए जो सफेद मक्खी के लिए थायोमेथॉक्सन नाम का रसायन है, उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति 2 लीटर पानी में घोल बना के, या इमिडाक्लोपिड बेंजोएट नाम का रसायन है, इसकी 1 ml मात्रा प्रति 2 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो व्हाइट फ्लाई खत्म हो जाएगी, सफेद मक्खी खत्म हो जाएगी, तो हमारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन किसान भाई ध्यान दें, अगर शुरू में 1-2 पौधे ऐसे दिखाई दें तो ऐसे पौधों को उखाड़ देना है और उखाड़ने के बाद उनको जला के नष्ट कर देना है, जिससे बीमारी पूरे खेत में ना फैले।
3: और मक्का भी आपने जिक्र किया था, मक्के की फसल है। और मक्का महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ इलाकों में मक्के की खेती बहुत की जाती है, इसमें क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएं हैं रोग की वजह से और कीड़ों की वजह से?
4: किसान भाइयों, जो मक्का में नुकसान, सबसे पहले जो बुआई के तुरंत बाद जो नुकसान होता है उसमें एक कीट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी बर्म, सैनिक कीट। उसमें सवेरे के समय आप खेतों में जाएंगे तो कुछ पौधे कटे हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी खरगोश ने काट दिए हैं, जबकि एक काले रंग की 3.5 सेंटीमीटर आकार की सुंडी होती है, वो रात में निकलती है और रात में निकलने के बाद पौधे को जमीन की सतह से काट देती है। तो अगर हम जो जहां से कटा हुआ पौधा है उसके आसपास की मिट्टी हटा के देखेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आकार की सुंडी आसानी से देखी जा सकती है,
3: मिट्टी में रहती है
4: और ये दिन में छिपी रहती है, रात में निकलती है और पौधे को मतलब भूमि की सतह से काट देती है। तो इसके प्रबंधन के लिए जो दानेदार रसायन है हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% में दवाई आती है, उसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, लेकिन सिंचाई करने के उपरांत ही हम उसको रसायन को प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो एक और रसायन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजेंट या फेप्रोनिल, ये रसायन भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये काफी प्रभावी दवाई है। इसके साथ साथ एक अन्य कीट लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं तनाभेदक। जो तनाभेदक कीट होता है इसमें जो पौधा होता है, पौधे की जो गोफ होती है, गोफ में सुंडी बैठ जाती है और उसको अंदर गोल गोल छेद कर देती है, इससे पूरी पत्ती होती है उसमें छेद दिखाई देते हैं और ये काफी नुकसान करती है, उसमें लकड़ी जैसा बुरादा जैसे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसके प्रबंधन के लिए अगर दानेदार रसायन का हमें प्रयोग करना तो ये जो रसायन हमने बताए हैं इसमें कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% रसायन या फिर फेप्रोनिल, इन दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें स्प्रे करना है तो स्प्रे के लिए थायोमेथॉक्सम इंडोक्साकार्ब नाम का रसायन है, हम उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 100 ml मात्रा को प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो आसानी से इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक अभी जो इस समय भुट्टा भी शुरू हो गया है उसमें बाल आना शुरू हो गई है, तो उसमें भी कई जगह हमने देखा है कि एक कीट लग रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं अमेरिकन सुंडी। तो ये जो सुंडी है कपास में लगती है, टमाटर में लगती है, बैंगन में लगती है, बहुत सारे और फसलों में भी लगती है, मिर्च में खासकर इसका नुकसान होता है। तो ये वाली जो सुंडी है बहुत सारी फसलों को नुकसान करती है, तो ये भुट्टे पे जाके और उसके दानों को खाके नष्ट कर दे रही है, तो उसके प्रबंधन के लिए किसान भाई इंडोक्साकार्ब नाम का रसायन प्रयोग कर सकते हैं।
3: मक्का में कोई बीमारी भी लगती है?
4: मक्का में एक तना गलन नाम की बीमारी लगती है, तो उसमें प्राय देखा गया है कि जो तना होता है, जो भूमिगत तना होता है भूमि के सतह के पास में, उसमें भूरा रंग का पौधा बनता है, फिर बाद में खोखला हो जाता है और काला होके फिर पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसके प्रबंधन के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का रसायन है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं 300 ग्राम मात्रा को प्रति 100 लीटर में घोल बना के छिड़काव करने से।
3: बात करेंगे मुख्य फसल जो कि धान की है, पौध भी डाली जा रही है, तो इसकी जो संभावित समस्याएं हैं वो क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है?
4: किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बीमारी लगती है वो प्रायः देखा है भूमिगत बीमारियां होती हैं या बीज से फैलने वाली होती हैं। पहले बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीज का उपचार करने के लिए दो रसायन काफी प्रभावी हैं। इसमें एक बीटावैक्स के नाम से आता है, कार्बोक्सिन नाम का रसायन, और दूसरा जो रसायन है जिसको कार्बंडाजिम के नाम से जानते हैं, 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उस बीज का उपचार करते हैं तो हम आसानी से बहुत सारी जो बीमारियां फैलती हैं इसमें सीड ब्लाइट है या फिर एक झोंका रोग है, रोग होता है, उसको हम आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।
3: भूमि उपचार की बात भी की जाती है अक्सर कि भूमि में जो कीड़े मकोड़े होते हैं या बीमारियां पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए क्या भूमि उपचार की जरूरत पड़ती है कभी कभी?
4: किसान भाई भूमि का शोधन भी कर सकते हैं क्योंकि बीमारियां वहां से भी फैलती हैं, तो भूमि का शोधन करने के लिए ट्राइकोडर्मा ब्रिडी, ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम नाम के दो फफूंद हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक एकड़ में हम भूमि का अगर शोधन करना है तो 25 किलोग्राम सड़े हुए गोबर की खाद को हमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के रख देना है 15-20 दिन के अंतराल के लिए, और बाद में देखेंगे जो पूरा जो ट्राइकोडर्मा है पूरे गोबर में फैल जाएगा और उसको हम जुताई के समय, अंतिम जुताई जब करते हैं उस समय खेत में मिला देंगे, तो ये बीमारियों में काफी प्रभावी है और भूमि इसका शोधन आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और समस्या आ रही है जिसमें धान में खासकर एक निमेटोड की समस्या आ रही है। निमेटोड में क्या होता है, जो पौध से शुरुआत होती है तो उसमें जड़ों में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, गांठें जब बन जाती हैं तो जड़ खराब हो जाती है, पौधे भूमि से पानी भी नहीं ले सकते हैं, पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण पौधा पीला होके और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर पौधा पूरा खत्म हो जाता है, सूख जाता है। तो उसके प्रबंधन के लिए किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूंगा कि नीम की खली 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जमीन में मिलाएंगे तो निमेटोड नाम की समस्या है उसको खत्म कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य समस्या काफी देखी गई है, इसमें रेड बर्म के नाम से एक कीट होता है जिसमें जो केचुए होते हैं, केचुए की तरह ही जीव है लेकिन वो केचुए ना होके एक परजीवी है, वो उसमें देखें केचुए थोड़े मोटे आकार के होते हैं, ये बहुत ही धागे की तरह लाल लाल आकार में होंगे लेकिन ये केचुए जैसे दिखाई देते हैं, ये जड़ों के पास बैठ जाते हैं और जड़ों से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं जिसके कारण भी पौधे काफी उनकी कमजोर हो जाते हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है, पीले पड़ के सूखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसके लिए भी नीम की जो खली मैंने बताई है ये काफी प्रभावी है। इसके साथ साथ एक रसायन है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोफ्यूरॉन, 3% दानेदार रसायन है। इस रसायन का भी 2 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम प्रयोग करेंगे तो आसानी से हम इसको प्रबंधन कर सकते हैं।
3: और धान की जब रोपाई हो जाती है उसके बाद कुछ जो मुख्य समस्याएं होती हैं उनका भी जिक्र करें।
4: किसान भाई, अगर रोपाई हम कर लेते हैं तो रोपाई के बाद 10-15 दिन के अंतराल पे आप देखेंगे तो एक समस्या आती है तनावेदक की। तनावेदक दो अवस्थाओं में लगता है।

0: पहली जो अवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वानस्पति अवस्था, तो उसमें जो सूढ़ी होती है अंदर बैठ जाती है और उसकी गोफ में बैठ के उसके जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग मटसार बोलते हैं, डेड हेड बोलते हैं, उसको काट देती है और उसको हम खींचेंगे जो गोफ को, गोफ आसानी से निकल आएगी। सूढ़ी देखेंगे तो उसमें लगभग 2 सेंटीमीटर सूढ़ी, हरे रंग की सूढ़ी दिखाई देगी। तो ये पहली अवस्था होती है। एक बार जब लगती है बाल वाली अवस्था में लगती है तो उसमें जो बालें होती हैं उनमें दाना नहीं बनता, बालें बिल्कुल सीधी खड़ी हुई दिखाई देती हैं और सफेद दिखाई देती हैं। ऐसी बालें में इनमें दाना नहीं बनता है तो काफी आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो इसके प्रबंधन के लिए रोपाई कि 15-20 दिन बाद हम जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नाम का रसायन है हम उसका 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं, या जो रीजेंट या फेप्रोन नाम का रसायन है उसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके हम आसानी से तनाभेदक पत्ती लपेटक को प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि किस प्रकार से खरीफ मौसम की जो विभिन्न फसलें हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हैं या फिर दूसरी फसलें हैं, उनकी देखभाल कैसे करें, उनसे संबंधित जो भी कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें, विस्तार से डॉक्टर संजय कुमार जी ने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इससे लाभ जरूर उठाएंगे क्योंकि वो फसलें उनके खेतों पर खड़ी हुई है या उनकी बुआई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मीना बहन, अभी हमारे सभी किसान भैया और बहनों ने सुनी खरीफ फसलों में कीट और रोग नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहे डॉक्टर संजय कुमार और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे डॉक्टर विनय वर्मा।
3: हाँ भैया।
2: और अब समय ही चलो एक मनोरंजन को, तो हम अपने सभी किसान भैया के लिए सुनवाते हैं एक प्यारो सुल्लू गीत बत्सला शर्मा जी की आवाज़ में।

0: अनिल भैया, अभी हमारे सब किसान भैया बहन ने सुनो जो लोकगीत, और हमें उम्मीद है हमारे किसान भैया बहन के जो लोकगीत जरूर पसंद
1: बिल्कुल।
0: आओगे। और पिछले दिनों हमारे जो अनिल भैया गए थे ग्राम आजमपुर ब्लॉक दातागंज जनपद बदायूं में, और वहाँ हमारे अनिल भैया ने बातचीत करी प्रगतिशील कृषक से, भेंट श्री अनूप कुमार से, और उनसे काका बातचीत करी।

0: मानना है।
1: परिवार के
0: हाँ
1: सबसे बड़े होने के
0: जी,
1: नाते आपको जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा पड़ गया, जिस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं। हम अपने खेती बाड़ी ही करें और खेती बाड़ी से ही घर परिवार का पालन पोषण करें।
0: बिल्कुल।
1: तो कौन कौन सी फसलों को उगाते हैं?
0: देखिए साहब, मेरे यहाँ पे ज्यादातर धान, बाजरा
1: जी
0: और गेहूं ज्यादा होता है। इस बार हमने आलू करे, आलू के बाद मैंने करी थी मक्का, और इस समय मक्का है भी मेरे पास,
1: अच्छा,
0: खड़ी
1: तो मक्का की फसल आपने कब लगाई थी?
0: है। मक्का ये फसल हमने लगाई थी, ये समझो, हाँ
1: आलू को काटने के बाद लगाई होगी।
0: आलू के बाद लगा दी थी।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: मक्का की फसल में लागत ज्यादा आती है या कम आती है?
0: लागत ज्यादा आती है।
1: तो 1 बीघा को मक्का लगाने के लिए कितनी लागत आ जाती होगी लगभग?
0: 25 से 3 हजार रुपए, हाँ
1: अच्छा, पूरी फसल पे।
0: पूरी फसल पे, प्रत्येक बीघा।
1: अच्छा, तो
0: हाँ
1: इसमें माल कितने का निकलता है?
0: माल देवो, जैसी आपकी खेती के हिसाब से निकलती है, वैसे 7-8 क्विंटल से कम नहीं निकलती है बीघा।
1: अच्छा, तो
0: हाँ,
1: अगर आपकी 7 क्विंटल भी निकल आई तो क्या भाव बिक जाती है?
0: 2018-2019 रुपए चलती है।
1: 2,1900 रुपये।
0: हाँ
1: अगर 2,000 भी निकल आई तो 7 दूनी 14,000 रुपये की होगी आपकी 1 बीघा
0: बिल्कुल,
1: में।
0: हाँ
1: अगर आपने 3,000 लागत लगा दी तो भी 11,000 रुपये आपको बच गए।
0: हाँ अगर
1: तो
0: 10-11 हजार रुपए बीघा पे नहीं बचे तो किसान क्या करेगा, बहुत
1: क्या
0: से
1: करें?
0: खर्चे आते हैं।
1: लेकिन हमने सुना है कि किसान भाई कहते हैं और फसलों में तो इतना भी नहीं बच पाता है, धान में लागत ज्यादा आ जाती है, गेहूं की
0: धान में
1: फसल कम
0: बीमारियां,
1: निकलती है।
0: हाँ
1: तो कुल मिला के मक्का की फसल अच्छी है
0: हाँ मक्का की बढ़िया है तो लगती है, लेकिन
1: जी।
0: फसल बढ़िया है।
1: और वैसे भी जो है सरकार का जोर है कि मोटे अनाजों को उगाया जाए, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनको।
0: नहीं, यहाँ पे नहीं बनता है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर आए हमारे यहाँ पे ये चीज दिखवाएं तो हमारे यहाँ बना सकते हैं लोग।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो देखिए इसका जो संस्थान है नया आपका इज्जत नगर में, IVRI, वहां पर ये प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को
0: अच्छा,
1: इसी संबंध में कि आप बर्मी कंपोस्ट बनाएं, केंचुआ से गोबर की खाद बनाएं, तो आपको उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। होता क्या है, जो केंचुआ गोबर को खा के खाद बनाता है तो वो खाद बड़ी उपजाऊ होती है, वो भुरभुरी होती है।
0: हाँ पेड़ को नहीं जाती।
1: हाँ, उसको आप सब्जी वाली फसलों में पेड़ पेड़ लगा भी सकते हैं। जैसे आप यूरिया डाई डाल रहे हैं, इस तरह से यूरिया डाई ना डाल के आप देखिए, यूरिया की भी किल्लत है,
0: बिल्कुल,
1: DAP की भी किल्लत है,
0: समय पर नहीं मिलती है।
1: समय पर नहीं मिलती और आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आप अपने घर की ही चीज क्यों ना इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा।
0: ढेचा लगा देते हैं, ढेचा बह देते हैं खेत में,
1: अरे
0: वो
1: वाह,
0: काट
1: हरी
0: देते हैं।
1: हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं,
0: हाँ
1: बहुत
0: ढेचा है, गुआर है,
1: अच्छी बात
0: मूंग
1: है।
0: है, ये बह देते हैं खेत में, खाली नहीं, वो हैरो से काट दिया, खाद बना दी उसकी।
1: अच्छा, उसको उसी में जोत दिया।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपको हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अपना भाई बढ़िया काम करें, देसी खाद जहां तक बने वो लगाते रहें, बनाते रहें, और क्या है, खाद DAP के ज्यादा नहीं इस्तेमाल करें।
1: देसी खाद तो 3 साल तक काम करती है, हमने सुना है।
0: बिल्कुल, हाँ 3 साल करती है, और 3 साल में आपका अगर गोबर वाला गड्ढा है उसमें डालते रहते हो, वो भी आपका फिर कामयाब हो जाएगा, खेत
1: बिल्कुल
0: नया रहेगा बिल्कुल।
1: जी, तो इस तरह से हमारे किसान भाई जो है उन्नत तकनीकी के साथ जो है अपनी खेती बाड़ी करें और बड़ी सूझबूझ के साथ खेती करें।
0: बिल्कुल, दिमाग फ्री होके करें, कदम माइंड फ्री होके कि हमें अब क्या करना है, कायदा
1: हाँ
0: अनुसार करें, कोई दिक्कत नहीं आती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: तो इस तरह से जो है ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के चक्कर में ना रहें
0: ना लाए
1: और अपनी भी खाद बनाएं,
0: बिल्कुल,
1: जिससे
0: हम तो
1: आपके
0: अपनी बनाते हैं सर, ऐसे समझिए आप,
1: बहुत अच्छा
0: हम
1: है
0: नहीं, हम चक्कर नहीं पड़ते, खाद मिलती नहीं है, टाइम है नहीं, लाइन में
1: जी।
0: लगे, इतने में अपनी बना लेंगे
1: सही बात है।
0: और क्या
1: ये तो होना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। देखिए, छोटी छोटी बचतों सही, क्योंकि लंबी चौड़ी बचत नहीं है खेती में, तो ये छोटी
0: बिल्कुल
1: छोटी बचत करी जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को भला होगा।
0: बिल्कुल, यही बचत है और क्या है,
1: हाँ,
0: 2000 2200 का, 2500 का DAP का कट्टा दे रहे हैं।
1: और वो 6 महीने की एक फसल में ही खत्म हो जाता है।
0: बिल्कुल, 3 महीने में खत्म। हाँ
1: बिल्कुल, 1 क्विंटल गल्ला आपका खत्म हो गया, ऐसे मानो आपने 1 कट्टा कर दिया तो 1 क्विंटल गल्ला आपका गया।
0: हाँ गया, और 2000 रुपए की अगर ट्रॉली अगर उसकी डाल दे रहे हैं
1: खाद
0: खाद
1: की
0: की, तो
1: तो 1 बीघा में
0: वो
1: तो वो इतना पैदा कर देगी कि आपको कहीं किसी कोई खाद की
0: बिल्कुल
1: जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल कहीं नहीं।
1: हाँ, देसी खाद अगर आपको कहीं मिल जाए 2,000 रुपये ट्रायल की तो बहुत है, एक बीघे।
0: बहुत है, बहुत है यार।
1: और वहां 1 50 किलो का कट्टा जरा सा ले आते हैं आप।
0: वही तो, हम तो अभी डाल के निच्चू गए, अब
1: अच्छा
0: खाद डालनी है,
1: अच्छा
0: पानी चला रहे हैं।

0: खेत पानी भरा है, घास जम जाएगी, फिर जुताई करके धान लगवा देंगे।
1: अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो शर्मा जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत।
2: तो मीना बहन, देखो हमारे सभी किसान भैया और बहन ने सुनी जानकारी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक से भेंट विषय को।
3: हाँ भैया,
2: जानकारी दे रहे श्री अनूप कुमार जो कि ग्राम आजमपुर ब्लॉक दातागंज जनपद बदायूं से।
3: हाँ भैया।
2: और अब हम अपने सभी किसान भैन के लिए लेकर आए हैं कृषि संकेत कार्यक्रम।
3: हाँ भैया।
2: फसल सुरक्षा उपकरणों को प्रयोग और देखभाल।
3: हाँ भैया। और जैसे हमारे जो किसान भैया बहन है ना, खेती तो हमारे सभी किसान भैया बहन करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन भैया कई बार फसल की सुरक्षा करते समय अपनी सुरक्षा को भूल जाते हैं। दवा होता है ना भैया, दवा का छिड़काव हो या कीटनाशक का प्रयोग अगर सावधानी से ना बरती जाए तो इसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है भैया।
2: बिल्कुल मीना बहन, आजकल खेती में ना कई तरह के फसल सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करे जाते हैं, और स्प्रेयर जो है हमारे जो किसान भैया ना वे कई तरह के स्प्रेयर को काम में लाते हैं।
3: हाँ भैया।
2: और स्प्रेयर की देखभाल बहुत जरूरी है।
3: हाँ भैया।
2: क्योंकि अब पावर स्प्रेयर चल रहे हैं, आपने देखी हुई कि जो बैटरी से चलने वाले स्प्रेयर है ना उनको प्रेशर कम होता है।
3: हाँ भैया होता है।
2: और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो स्प्रेयर है ना उनको प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
3: ज्यादा होता है,
2: वे काफी एरिया को कवर करके चलते हैं। जो कि हमारे किसान बहन के लिए उनको रख रखाव किस तरह से रखना चाहिए, जैसे मान लो हमारे बैटरी से चालित स्प्रेयर है उनकी बैटरी कैसी है।
3: हाँ, वो भी देखना है।
2: देखना है नोजिल कैसी है।
3: हाँ।
2: नोजिल में कहीं कूड़ा कचरा तो ना है, कहीं से लीक ना हो रही हो, मालूम पड़ी कि आपकी दवा जो है लीक ही रही है, कहीं से पानी निकल रहा है तो वो आपके शरीर के संपर्क में आवे।
3: हाँ भी बिल्कुल।
2: आपके शरीर को नुकसान पहुंचावे। और उपकरण को सही से उसको देख लें, कहीं से कोई लीक ना है, या कहीं आपको जी मोटर है, आपने देखी हुई कि बैटरी वाली उसमें मोटर लगी होती है।
3: हाँ भैया, लगी
2: और मोटर में अगर कहीं वो पानी के संपर्क में आएगी या दवा के संपर्क में आएगी तो उसमें आगे आने वाले समय में जंग भी लग सकती है।
3: हाँ भैया लगती है।
2: आपकी मोटर खराब हो सकती है। तो जो बहुत सी बातें हैं उनको हमारे सभी किसान भैया को ध्यान रखने हैं, और फसल सुरक्षा के उपकरण जो है इस तरह से हमारे किसान भैया इस्तेमाल करें। स्प्रेयर जो है मास्क, दस्ताने, चश्मा और सुरक्षात्मक जो है कपड़ा भी पहने, किसान की सुरक्षा के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की फसल की दवा के लिए।
3: हाँ भैया बिल्कुल। अगर हम दवा को छिड़काव कर रहे हैं तो भाई हिसाब से अपने दस्ताने पहन के, मास्क लगा के और जो चश्मा वगैरह वो लगा के तभी दवा को छिड़काव करना चाहिए।
2: बिल्कुल। लेकिन अक्सर देखो जाता है कि हमारे जो किसान भाई है ना उपकरण तो खरीद लेते हैं, उनकी सही से देखभाल ना करता
3: भैया। और भैया जैसे फसल सुरक्षा होता है ना, जो उपकरण होता है ना उनको जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क से बचाता है भैया। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो किसान स्वस्थ रहता है और काम भी अच्छी तरह से पूरा होता है भैया।
2: और सबसे पहले बात करते हैं हम स्प्रेयर की, जैसे हमने बात पहले भी बताई हमारे जो भी किसान भैया हैं, ये खेती के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरण है। हम चाहे हाथ से चलावें या आपने हमने बताई कि बैटरी से चलावें या पेट्रोल डीजल की मोटर से चलावें, तो बहुत सारे स्प्रेयर को हम इस तरह से चलाते हैं।
3: हाँ अनिल भैया, अगर किसान भाई ये जरूर देख लें कि पाइप कहीं से फटा तो ना है।
2: हाँ।
3: और नोजल जाम तो ना है।
2: बिल्कुल।
3: और टंकी में रिसाव तो कहीं से ना हो रहा हो। अगर दवा भरने से पहले ये जांच कर ली जाए तो बाद में परेशानी ना होती है भैया।
2: तो इस बात को हमारे किसान भैया ध्यान रखें, और अगर इस तरह की कोई समस्या है, कई किसान भैया जो है काम खत्म होने के बाद स्प्रेयर को ऐसे ही रख देते हैं।
3: हाँ भैया रख देते
2: हैं, टंकी में बची हुई दवा भी पड़ी रहते हैं, इससे उपकरण जल्दी खराब होने की
3: संभावना बनी रहती है भैया।
2: बिल्कुल। और हमारे जो भी किसान भैया ऐसा करते हैं मीना बहन, तो वे छिड़काव पूरा हो जाए उसके बाद जो है टंकी को, पानी की जो टंकी है उनकी, वो उसे साफ अच्छी तरह से साफ करके धोकर रखें, और इससे दवा की परत ना जमेगी और उपकरण जो है आपको लंबे समय तक काम करेंगे।
3: और भैया जैसे किसान भैया बहनों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दवा मिलाते समय हाथों को सीधा संपर्क में ना हो, इसके लिए दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। और भैया सिर्फ दस्ताने ही नहीं, मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क भी जरूरी है। कई कीटनाशक और फफूंदी नाशक दवाएं सांस के साथ शरीर में पहुंच सकती हैं, इसलिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कोई दिखावा नहीं बल्कि आवश्यकता है भैया।
2: बिल्कुल, तो इस बात को हमारे किसान भैया ध्यान रखें, आंखों की सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। दवा की छोटी सी बूंद अगर आंख में चली जाए तो बहुत गंभीर समस्या बन जाती है, इसलिए पारदर्शी सुरक्षा चश्मा पहनना चाहिए, इससे आंखें सुरक्षित रहती हैं और काम भी आराम से हो सकता है।
3: हाँ भैया, और अक्सर किसान भाई तेज धूप में या हवा चलने के समय छिड़काव शुरू कर देता है, ये ठीक नहीं है। सुबह या शाम के समय छिड़काव करना बेहतर रहता है। तेज हवा में दवा उड़कर शरीर पर ही पड़ सकती है और फसल पर समान रूप से नहीं पहुँचती है भैया।
2: तो इस तरह से हमारे किसान भैया अपनी जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं उनको ध्यान रखें।
3: हाँ,
2: और आप देखो मीना बहन, हम अपने सभी किसान भैया के लिए एक और जानकारी दे दें कल के मौसम की।
3: हाँ,
2: कल को मौसम अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। आर्द्रता 42% है और हवा की दशा पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहन की संभावना है।
3: हाँ भैया,
2: और अब हमें समय अनुमति ना दे रहे कि हम अपने सभी किसान भैया से और बातें करें, तो इसी वादे के साथ अगले कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने भैया अनिल
3: और अपनी बहन मीना को दे अनुमति।
2: राम राम, राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज का कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे अनिल किशोर और मीना। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विक्रांत चौधरी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। श्रोता मंच कार्यक्रम में श्रोताओं आज फोन इन बातचीत करते हैं रंगिनी छत्तीसगढ़ के श्रोता श्री दिनेश वर्मा से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं असीम सक्सेना।

0: श्रोता मंच कार्यक्रम में श्रोताओं नमस्कार, मनोज की तरफ से। यूं तो इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात बहुत सारे श्रोताओं से करा चुके हैं, कुछ पास के हैं तो कुछ दूर के हैं, लेकिन अगर नजदीकियां हो, प्रेम हो, स्नेह हो तो क्या दूर क्या पास। उसी क्रम में आज श्रोता मंच कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा साहब। दिनेश वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: सबसे पहला सवाल श्रोता मंच कार्यक्रम में दिनेश वर्मा जी यही है कि आकाशवाणी रामपुर से आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
1: मेरा आकाशवाणी रामपुर से जुड़ाव के पहले स्थानीय स्तर के आकाशवाणी केंद्र रायपुर से जुड़ा हुआ था और उसके साथ साथ रेडियो श्रीलंका के कार्यक्रम में भाग लेता था।
0: अच्छा।
1: बीच में श्रोताओं से संपर्क होने से अन्य केंद्रों की जानकारी मिली तो रामपुर भी सुनना चालू किया हमने।
0: तो वो कौन सा पहला कार्यक्रम था जब आपने आकाशवाणी रामपुर ट्यून किया और आपको उस कार्यक्रम को सुनने में मजा आया और आपका जो लगाव है आकाशवाणी रामपुर से बढ़ता चला गया?
1: मेरा रामपुर से तो मेन कार्यक्रम फरमाइश कार्यक्रम ही सुनता था और फरमाइश भेजता था और अन्य कार्यक्रम में युवाणी कार्यक्रम का विभिन्न प्रसारणों को सुनता था, कृषि जगत के कार्यक्रम को भी सुनता था।
0: अच्छा।
1: लेकिन मुख्य रूप से फरमाइश कार्यक्रम में ज्यादा पत्र भेजता था मैं।
0: बिल्कुल, ज्यादातर श्रोता फिल्मों के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे जुड़ाव होता है और फिर वो ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि हमारे दूसरे कार्यक्रमों को भी सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी।
0: तो दिनेश वर्मा जी रेडियो कब से सुन रहे हैं, कौन सा वो समय था जब आपने सबसे पहली बार रेडियो सुना, आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना?
1: मैं सन 1980 से रेडियो प्रसारण सुनना प्रारंभ किया हूँ।
0: अच्छा।
1: मेरे यहाँ चाचा जी थे भारत लाल वर्मा, ये हमेशा पोस्ट कार्ड लिख के, मैं स्कूल जाता था तो मुझे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड को डालने के लिए देते थे, उसी को देख कर मैं भी पोस्ट कार्ड खरीद के फरमाइश भेजना चालू किया और रेडियो सुनना चालू किया।
0: चलिए, ये तो आपके शुरुआती दिनों की बात रही, आकाशवाणी से आपका लगाव इस तरीके से बढ़ता चला गया। तो किस तरीके के कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आते हैं आकाशवाणी पर?
1: आकाशवाणी में अब जैसे युवानी कार्यक्रम ले लीजिए, युवानी कार्यक्रम तो ऐसा कार्यक्रम है जो युवा अवस्था में हर युवा दीवाने होते थे।
0: बिल्कुल।
1: युवानी कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल सही।
1: इसका परिचय धुन सुनते ही युवाओं में कार्यक्रम के लिए समय निकालने की बात चल उठती है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे स्थानीय स्तर के आकाशवाणी रायपुर के युवानी कार्यक्रम विभिन्न स्तंभ होते थे, प्रत्येक स्तंभ में हिस्सा लेते थे, बकायदा युवानी कार्यक्रम का तैयार करते थे।
0: अच्छा
1: जी।
0: ज्यादातर आकाशवाणी केंद्र युवाणी कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि युवाओं में कैरियर्स को लेकर अपने आप को अपडेट रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, यही उसका उद्देश्य है। आकाशवाणी अपने हर वर्ग के श्रोताओं का ख्याल रखता है, हर वर्ग के श्रोताओं के लिए कार्यक्रम तैयार करता है और यही उद्देश्य को लेकर आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा हम पूरी कर रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। तो आकाशवाणी 90 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा है, क्या कहेंगे आप?
1: आकाशवाणी एवं रेडियो कार्यक्रम में उद्घोषक अपनी अथक परिश्रम के कार्यक्रम में निखार लाते हैं, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, श्रोताओं का राय और सुनने वालों के विचार को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इस 90 वर्ष के कार्यकाल में आकाशवाणी के उद्घोषकों का अगर विचार देखा जाए बहुत बेहतर है। लेकिन आज के दिन में आज हर श्रोता की यही दिली इच्छा होती है कि वह उद्घोषक का चहेता बन सके। उद्घोषक को चाहिए कि वह कार्यक्रम की रोचकता पर ध्यान दें, किसी व्यक्ति विशेष के खतों पर नहीं। एक ही श्रोता के पत्र बार बार शामिल करने से अन्य श्रोताओं के जज्बातों को ठेस पहुंचती है। अच्छा, सभी के साथ अपना एवं स्नेह रखते हुए कार्यक्रम की नवीनता को ध्यान रखकर उद्घोषक को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए। 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं सभी श्रोताओं एवं आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि श्रोता जो है वो नाम बदल कर बार बार खत भेजते हैं, बार बार ईमेल्स भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रोताओं की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपना नाम ना बदलें, अपने पते को ना बदलें और बार बार ना भेजें, इससे और श्रोता जो है उनके नाम छूट जाते हैं। दिनेश शर्मा जी, आपसे ये जाने, आकाशवाणी रामपुर के अभी तक आपने कौन कौन से कार्यक्रम सुने हैं?
1: रामपुर के कार्यक्रमों में तो मनभावन है, आपका पत्र मिला है, श्रोता मंच है, कृषि जगत है, युवाणी के विभिन्न कार्यक्रम है, प्लस फार्मेसी कार्यक्रम है, जैसे कि आपके यहाँ रोज पर गीत आपके नाम, गीत गाता चल, गीतांजलि, आपकी पसंद, प्राय सभी कार्यक्रम को अपन सुनते हैं।
0: लगभग आप सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं और आकाशवाणी रामपुर से प्यार भी करते हैं और यदा कदा मनभावन कार्यक्रम में आपकी शब्दावली हम तक दिख जाती है।
1: जी जी।
0: और उस शब्दावली का एक संदेश होता है उसमें छिपा हुआ और बड़ी सारगर्भित वो शब्दावली होती है। अच्छा भी लगता है कि इतनी दूर से कोई श्रोता हमें सुन रहे हैं और एक उसमें संदेश छिपा हुआ है जिसको बयां करना चाह रहे हैं। दिनेश वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं रेडियो सुनने के साथ साथ।
1: मैं सर विद्युत, अपने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था।
0: अच्छा।
1: विगत अगस्त 2025 में मैं रिटायर हुआ हूँ सर।
0: अच्छा, ये बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आकाशवाणी रामपुर की तरफ से कि आप जीवन की दूसरी और एक जिम्मेदारी भरी पारी शुरू कर रहे हैं। तो परिवार में कौन कौन सुनते हैं रेडियो के कार्यक्रमों को?
1: नहीं, मेरे परिवार में सर मेरे मिसेज सुनती है और मेरी गुड़िया जो है प्रियंका बंछोर, जिसकी शादी हो गई है, प्रियंका बंछोर सुनती है।
0: अच्छा।
1: और दो बालक हैं, दोनों बालक अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, जॉब करते हैं। तो
0: कभी कोई यादें भी जुड़ी हुई होंगी, आपने लंबे समय से रेडियो को सुन रहे हैं और एक लंबा अनुभव है, आप वरिष्ठ श्रोता हैं हमारे, तो कोई आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लेकर कभी आपका आकाशवाणी आना हुआ, अपने स्थानीय आकाशवाणी केंद्र में आप गए हो, कोई खास यादें?
1: हमारे यहाँ आकाशवाणी रायपुर से युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत पत्र मिला कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ पत्र का चयन होता था।
0: अच्छा।
1: जिसमें श्रोताओं को होड़ लगा रहता था अच्छे से अच्छे शब्दों में लिखें, जिसे हमें सर्वश्रेष्ठ श्रोता का पुरस्कार मिल सके, सम्मान मिल सके। उस युवाणी कार्यक्रम के पत्र मिला कार्यक्रम में मुझे सर्वश्रेष्ठ श्रोता का पुरस्कार 7 से 8 बार प्राप्त हुआ है।
0: अरे वाह।
1: कार्यक्रम सुनने के बाद अपना समीक्षा जो भेजता था मैं, उस समीक्षा को युवाणी कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ पत्र के रूप में चयन, ये मेरी विशेष ये है। विशेषकर मैं कार्यक्रम जैसे सुनता भी हूँ तो अधिकांशतः समीक्षात्मक कार्यक्रम में पत्र अवश्य लिखता हूँ।
0: बिल्कुल। और यही एक सुदेश श्रोता की पहचान है कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनने के बाद सार्वगर्भित प्रतिक्रिया अगर पहुंचे हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होते हैं उनको एक गर्व की अनुभूति होती है और ये एहसास होता है नई जिम्मेदारी का कि कार्यक्रम

0: को और बेहतरीन किया जाए। तो दिनेश
1: जी
0: वर्मा जी, जब आप सर्वश्रेष्ठ श्रोता घोषित हुए, आप आकाशवाणी
1: जी
0: के स्टूडियो गए होंगे, तो कैसा अनुभव
1: जी
0: रहा आपका?
1: नहीं, अनुभूति तो बहुत अच्छा होता था, जिसका आवाज सुनते थे उसे सामने मिलने का अवसर मिला, जिसको अपन चाहते थे कि एक बार जाके मुलाकात कर लें, तो उस अनाउंसरों से मुलाकात होती थी। हकीकत में जैसे सुनते हैं रेडियो में
0: जी
1: और अनुभव करते हैं कि आवाज ऐसा आ रहा है इतना मधुर,
0: बिल्कुल
1: वो व्यक्ति कैसा होगा, ये मिलने की इच्छा होती थी, वो जाने से पूर्ण हुआ।
0: बिल्कुल, और यही एक आवाज का रिश्ता है कि जिससे हम कानों के जरिए सुनते हैं और
1: जी
0: देखा नहीं होता, और कभी वो व्यक्ति हमारे सामने हो तो एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग एहसास होता है, उसको बयां कर पाना शायद मुश्किल है। दिनेश
1: जी
0: वर्मा जी, आकाशवाणी रामपुर की अगर हम बात करें, तो
1: जी
0: आकाशवाणी रामपुर में सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको कौन सा लगता है?
1: मेरे को सबसे अच्छा कार्यक्रम मनभावन लगता है, संदेश
0: अच्छा, क्या कारण मानते हैं उसके पीछे?
1: इसमें संदेश छुपा हुआ रहता है, एक एक श्रोताओं का जो संदेश रहता है उस संदेश से हमें शिक्षा मिलती है, करने की इच्छा जागृत होती है। तो मुझे मनभावन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता
0: अच्छा,
1: है, शब्दावली का कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है कि आप आकाशवाणी रामपुर के मनभावन कार्यक्रम को पसंद करते हैं। दिनेश वर्मा जी, कोई खास बात हो आपके क्षेत्र की, कोई खास स्थान हो जो आप श्रोताओं से बताना चाहें, आपके पैतृक निवास स्थान के आसपास की?
1: मैं वर्तमान में भिलाई निवास करता हूँ, लंबे समय तक यहीं सर्विस में था तो यही मकान बना लिया हूँ मैं, तो
0: अच्छा।
1: विशेषकर भिलाई स्टील प्लांट है देखने लायक, यहाँ का मैत्री बाग है, भिलाई स्टील प्लांट का रूस और भारत का मधुर संबंध का निशान,
0: बिल्कुल।
1: और हमारे भिलाई से कुछ दूरी पर माँ बम्लेश्वरी की मंदिर है डूंगरगढ़, प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी पहुँचते हैं,
0: बिल्कुल
1: अत्यधिक दर्शनीय स्थल है।
0: बिल्कुल, भिलाई इस्पात केंद्र तो पूरे भारत में ही क्या, दुनिया भर में विख्यात है। दिनेश वर्मा जी, आकाशवाणी के श्रोताओं से आप अगर कुछ कहना चाहें श्रोता मंच कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि आप सीधे श्रोताओं से जुड़े हैं, श्रोताओं का ये मंच है,
1: श्रोताओं
0: तो क्या कहना चाहेंगे आप श्रोताओं से?
1: से यही कहना चाहूंगा, रेडियो कार्यक्रम को उद्घोषक गण अथक प्रयास करके निखारने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, तो श्रोता अपने विचार व्यक्त करें, कार्यक्रम की वस्तुस्थिति समझें और कार्यक्रम का आनंद लें।
0: बिल्कुल, तो यही प्यार, यही स्नेह जिस तरीके से 90 वर्षों से आज तक देते आए हैं हमारे श्रोता, तो हम भी चाहेंगे कि श्रोताओं का ये प्यार, ये जुड़ाव, ये स्नेह यूं ही बना रहे आकाशवाणी के साथ और आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते रहें। दिनेश वर्मा जी, आज श्रोता मंच कार्यक्रम में आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोता मंच कार्यक्रम में दिनेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: श्रोता मंच, आज इस कार्यक्रम में फोन इन बातचीत आप सुन रहे थे रंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता श्री दिनेश वर्मा जी से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना।
1: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ ही देर में यानी 7:31 पर कार्यक्रम सुगम

संगीत में आज कलाकार होंगी श्वेता रस्तोगी और अनूप जलोटा। रात 8 बजे आकाशवाणी लखनऊ से हम रिले करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत। समय याद रखिएगा आज रात 8 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। गीत गाता चल व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आज प्रसारित होगा रात 8:15 पर। अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती रात 9:30 पर और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

8:45 पर कल सुबह कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विशेष प्रस्तुति योग से आरोग्य, संकलन रेणु यादव का, आलेख सुनील सक्सेना का है और प्रस्तुति होगी असीम सक्सेना की।

कल सुबह 6:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कोलकाता में आयोजित राजकीय स्तर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सात बजकर 7:31 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष भेंटवार्ता, योग के विभिन्न पक्ष, इस विषय पर डॉक्टर प्रियांश उपाध्याय शुक्ला से असीम सक्सेना की बातचीत। आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 10 बजे। विश्व योग दिवस पर दिन में 2:30 पर सुनिएगा विशेष प्रस्तुति योग आग्रह, सबका साथ सबका विश्वास। आलेख और सह प्रस्तुति है असीम सक्सेना की और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शोवित शर्मा। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें, कल सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कोलकाता में आयोजित राजकीय स्तर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और बिजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
5: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद कर उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह, 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
6: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
8: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। संध्या के 7:32 हो चुके हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्वेता रस्तोगी और अनूप जलोटा की गाई चंद गजलें। सबसे पहले सुनते हैं श्वेता रस्तोगी की गाई ये गजल।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। आज कलाकार हैं श्वेता रस्तोगी और अनूप जलोटा। एक और गजल सुनते हैं श्वेता रस्तोगी की गाई।

अभी आप सुन रहे थे श्वेता रस्तोगी और अनूप जलोटा की गाई चंद गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी लखनऊ से हम रिले कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत।

0: हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में हम यह पाते हैं कि जब कोई बड़ा हमें आशीर्वाद देता है तो यही कहता आयुष्मान भव। यह आयुष्मान भव की परंपरा हमारी पुरातन परंपरा में से एक है जो आज तक चली आ रही है। गुरुओं द्वारा देवी देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं तब भी यही अपेक्षा करते हैं आयुष्मान भव का हमें आशीर्वाद मिले। और इसी आयुष शब्द से जो हमारे ऋषि महर्षि प्रतिपादित किए हैं एक स्वस्थ रहने की कला और स्वस्थ रहने की उपायों को जड़ी बूटियों के माध्यम से या उनके निकले हुए अर्क से हमें प्राप्त होते रहे हैं और हम दीर्घायु होने के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय भी अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु जी हैं। और दयालु जी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे मंत्री के रूप में, उससे पीछे की थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री धारक हैं बॉटनी में। इस पीएचडी बॉटनी करते समय भी आपने आयुष के क्षेत्र में यानी आयुर्वेद के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें काफी कुछ कार्य किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के साथ साथ आप शिक्षा को प्रगति का मूल मानते हैं। शिक्षाविद के रूप में आपकी जो पहचान है उसे भी हम लोग बखूबी जानते समझते हैं। इसी बीच स्वागत करते हैं मंत्री साहब आपका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे श्रोताओं के लिए कि आज हमारे बीच हैं, आपके शब्दों आपकी वाणी से हम दो चार होने की कोशिश के क्रम में आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आयुष की अपने प्रदेश में।
1: सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका नारा है विरासत भी विकास भी।
0: जी,
1: आयुर्वेद हमारी विरासत है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आयुष की जितनी भी विधाएं हैं ये सब बिखरे हुए थे। बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्होंने आयुष के रूप में एक माला पिरोने का काम किया। 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है इस देश की, कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग दिवस को मान्यता प्रदान किया और आज भारत की एक उस विधा को योगियों की, ऋषियों की, महर्षियों की, मुनियों की, साधकों की, तपस्वियों की, इस विधा को जिसको कहते थे योग योगियों की चीज है, उसको सारी दुनिया ने स्वीकार किया। हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और उत्तर प्रदेश का तो गौरव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी

0: योगी है,
1: जी
0: तो इन 12 और 9 वर्षों की यात्रा प्रदेश के लिए हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि एक सब कुछ बिखरा था। हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो है

0: जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे हैं। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के, जो पुराने अस्पताल हैं।
1: जी
0: जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था, अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो। तो वह जो परिवर्तन, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं, तो फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं, और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है, और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं। 8 हमारे अस्पताल, जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे, उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन, नए परिसर में बना चुके हैं। और जगह की अपने मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं,
1: वैसे
0: हम अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद, मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती थी।
1: इस विश्वविद्यालय से क्या, जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग?
0: 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ हो गया,
1: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह
0: से, सब एक जगह हो गया। और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा। तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका।
1: जब आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपने पहले बता दिया, और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी। और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहां रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने की, कहने को तो सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
0: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोले, इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और उद्घाटन कर दिया, एक गोवा में बन चुका है। तो आयुर्वेद के नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना लगातार हो रही है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कलकत्ता में है, उसकी सब ब्रांच दिल्ली में खुल गई, उसकी एक सब ब्रांच लखनऊ में खुल गई, और एक केंद्रीय संस्थान आयुर्वेद का वो पहले से झांसी में काम कर रहा है आयुर्वेद का। हम सबका प्रयास ये है, अखिल भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो गाजियाबाद ने बन के काम करना शुरू कर दिया। तो हर विधा के शोध पर लगातार काम हो रहा है, और शोध के बगैर दुनिया आजकल प्रमाण चाहती है, लेकिन जिस विधा का जन्म वेदों से हुआ हो, अथर्ववेद की उपशाखा मानते हैं आयुर्वेद को, हम महर्षि सुश्रुत से दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का। तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है, महर्षि सुश्रुत को, वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनकी शरीर ही प्रयोगशाला थी, समाज पे काम किया, वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद। सिद्ध हमारा एक विषय है, जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है, तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध
1: जी।
0: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने, वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की वर्षों की

0: साधना, योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन ध्यान इन सब का वो सहारा लेते थे प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
1: जी
0: मान्यता मिली।
1: मान्यता मिली है और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव-गांव में बने हुए उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की
0: देखिए,
1: तरफ से भी अलग
0: अब
1: से है
0: तो
1: क्या?
0: पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून। और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वरूपा का जन्म माना जाता है,
1: जी
0: जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, इसको
1: बिल्कुल
0: स्वरूपा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वरूपा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिलके समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है। और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वह स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। अब जैसे सप्ताहव्यापी, इसके पहले हम लोग 1 महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना
1: शामिल
0: है,
1: करना है।
0: योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि ये जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा। क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं
0: ये
1: उन पर भी।
0: हजारों साल की विरासत है,
1: इसीलिए
0: देश के
1: तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया
1: अब
0: है।
1: काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और लोगों से भी अपेक्षा अपने श्रोताओं से कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
0: करें,
1: बनाएं।
0: योग रहे निरोग का नारा देते हुए
1: बिल्कुल
0: अपनी
1: आपका
0: बात
1: ये
0: समाप्त
1: नारा
0: करिए।
1: पहले से भी चल रहा है, आपको द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
4: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू। ये फिक्र मंदिरों के

0: आह्वान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम गीत गाथा चल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना, अपना संदेश हम तक पहुंचाना, अपनी पसंद का गीत सुनना, तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9410087876। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए 9410087876। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हमें अपना संदेश भेज रहे हैं पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा शेरे, आपने लिखा है वेरणी से। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। अमरावती से कमरुला नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान, पोत्रा मुस्तफा खान और इन्हीं के साथ हैं आफिया खान। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। अमरावती से सैयद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, अल्फिया और इनके परिवार के सभी लोग। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। श्याम शाकिय कासगंज से। कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, ये हमारे श्रोता हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये अगला ईमेल, माफ कीजिए, अगला व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खड़से, ललिता खड़से, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके परिवार वाले। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। गुरावा पोस्ट किलोद से नंदलाल राजपूत, राजू, मनुकाबाई, नंदनीबाई, रुद्र और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं। मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। गांव खावरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अवन्या, कंचव और इनके परिवार के सभी लोग हमें व्हाट्सएप संदेश भेज रहे हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार वाले दतरंगी से हमें व्हाट्सएप संदेश किया है। गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और इन्हीं के साथ हैं मुन्ना अंसारी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। गंडुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अन्नू खान, अदनान खान, फैजान खान, आबाद खान, इन्हीं के साथ हैं कलीम अंसारी और उस्मान अंसारी। ये संदेश हम तक पहुंचा है सिद्धार्थनगर जिला नांदेड़ से आरती छोटी, बबली, रूपाली, वंदना दुले और सरूबाई दुले। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म यादों के मौसम से ये गीत। स्वर है अनुराधा पोडवाल और सुरेश ओवेराय का। संगीत

भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल हया में डूबे हुए वो होंठ वफा से लरसे हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

अभी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं? वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इन्हीं के साथ हैं सुरेश चौरसिया, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से। ये संदेश हम तक पहुंचा है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू और तरुण यादव। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम, वामिका, वाणी और इन्हीं के परिवार के सभी लोग नवाशहर पंजाब से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं वेरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, अमित वर्मा, सचिन, समरराज, आर्यन, आरोही, ईशिका, अंजलि, श्वेता और इनके परिवार के सभी लोग। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत, सादिया और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और इनके परिवार वालों का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ये हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास असम से। ये संदेश हम तक पहुंचा है खरगोन सोनावत से ही अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख, मूसा भाईजान और इन्हीं के साथ हैं राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेज रहे हैं। तिरुपति नगर नादुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर और इनके परिवार के सभी लोग। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल नभाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहेरकर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत और इनके परिवार वालों ने। ये हमारे श्रोता हैं गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, कटवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना, भरत कुमार और इनके परिवार वाले। कस्बा उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस और प्रशांत गुप्ता, इन्हीं के साथ हैं कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार वाले बड़ा बम चौक खंडवा से। अगला ई व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। गनगोना दातागंज से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान और इन्हीं के साथ हैं सैफ खान, ईशान, आजम और अरहान खान। ये संदेश हम तक पहुंचा है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजनू, अशोकपुरी, सुशील, वीके, कैलाश, नीलम, रमा पाली और सुनील पाठक। ये हमारे श्रोता हैं कर्नाटक स्टेट चिन्ह तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्वनी, आनंद, मनवीत और इनके परिवार के सभी लोग। एस एम जावेद, शगुप्ता, अंजुम गुमला झारखंड से हमें संदेश भेज रहे हैं। कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, श्रीमाली और इनके परिवार वाले। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, इन्हीं के साथ हैं सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये संदेश हम तक पहुंचा है फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल, शालनी, टिवांशी और इनके परिवार के सभी लोग।
अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जमानिया जिला गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति जायसवाल, इन्हीं के साथ हैं गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार और आर्यन कुमार जायसवाल। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है रेडियो ग्रुप गोवर्धन विहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रेधान खुराना और इनके परिवार वाले। रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, इन्हीं के साथ हैं चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कामड़े और इनके परिवार वाले। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमिंदर सिंह पांधा, जीएस रामगढ़िया और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेज रहे हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया और इनके परिवार के सभी लोग हमें संदेश भेज रहे हैं। गाड़की नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखड़े, कल्पना ताई लोखड़े, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखड़े, ये हमारे श्रोता हैं। सक्षम श्रेणिक और लता, राजाराम, ज्योति, अजीत, चांदनी चौक, सांगली महाराष्ट्र से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओवी और इनके परिवार वाले, सूर्यवाड़ी, छत्रपति संभाजी नगर से। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं बीजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। आप सब ने सुनना चाहा है शबनम फिल्म में, स्वर सोनू निगम का है, संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने और गीत को लिखा है जमीर काजमी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना और शहनाज बाबू अंसारी के साथ हैं हबीब अहमद इदरीशी, इरफान खान। राजद्वारा कोठी अफसराला से रूमा खान, बोवी खान, मदीहा खान, सुभान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन। ये संदेश हम तक पहुंचा है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिफान, बिटिया अलीशा, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और इन्हीं के साथ हैं चांदनी नाज। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं कोली नांदेड़ से साईं गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, दयानंद नारायण गायकवाड़ और इन्हीं के साथ हैं इन्हीं के परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सरांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी लोग। ये हमारे श्रोता हैं जिला जौनपुर से चंदा, चांदनी, आकाश कुमार और इन्हीं के मम्मी पापा। ये व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और कल्पित चौहान। अगला संदेश हम तक पहुंचा है परिमेल कासगंज से आवाद खान, नवील खान, आरफा, इल्मा, एम असलम सैफी और मास्टर जाहिद अली। ये ईमेल, माफ कीजिए, व्हाट्सएप संदेश हमें मिला है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार। ये हमारे श्रोता हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने और इन्हीं के साथ हैं प्रतिभा गोंडाने। अगला संदेश हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। मोहल्ला हलवायान शेरकोट विजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नशीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, सादर रानी और हिना कोसर। ये हमारे श्रोता हैं मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। पोपलघाट से माया शिवान।

श्री चंद्रकला देवीदास और इन्हीं के परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या रावत जी का, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया जमशेदपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा। अगला संदेश हमें मिला है ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया का, बागपत उत्तर प्रदेश से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी की पसंद पर सुनते हैं, साया फिल्म से। स्वर उदित नारायण का है और संगीत दिया है अनु मलिक ने। संगीत को लिखा है, इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर

0: आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
5: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
4: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
6: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
4: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he also launched dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors.

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बन गा,
0: और दूसरा गाना था

0: बदला। सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुम से
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।
1: जाने कैसे

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय

0: शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में, और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन-बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विथ राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।